0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: चांदनी रातें 1, 2, 3, 4

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम।

0: To your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
2: जबरदस्त है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
2: जबरदस्त है।

खूबसूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: बंदर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। यह है बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव,
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: जी हाँ, स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो चुके हैं। हम दोनों साथ साथ पहुंच चुके हैं यहाँ पे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए, किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करने के लिए, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वक्त बिताने के लिए। तो भाई यहाँ पे हम दोनों ने कुर्सी की पेटी जो है बांध ली है,
1: एकदम टाइटली बांध ली है। आप लोग भी जो है जल्दी से अपनी फास्टन योर सीट बेल्ट, बिकॉज़ हम जो है उड़ान
0: भरने वाले हैं।
1: लेडीज
0: एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। ऐसे ही मेरा मन किया बोलने का। देखो, मन किया तो किया, अब उसमें हम ऐसे लॉजिक नहीं लगा सकते, ठीक है। मन एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे रैशनलिटी
1: बोला भी नहीं है। मैंने कुछ बोला भी नहीं, और ये सर अपने एक्सप्लेनेशन खुद दे रहा है। मैं तारीफ करने वाली थी कि सुदेव आप ट्राई क्यों नहीं करते
0: क्या पायलट बनने के लिए?
1: नहीं
0: नहीं, नहीं।
1: पायलट का जो है वो कि आप गाड़ी चलाइए, मैं जो है
0: मैं वॉइस ओवर दे देता हूँ, आप बस गाड़ी चलाइए, है ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे मेरा मन था वैसे एक टाइम पे पायलट बनने का।
1: आपका हर जो भी चीज बोलो कि अरे एक बार भी मेरा मन था, एक बार मैंने सोचा था।
0: नहीं, मेरा सही में मन था, मेरा मन था या तो एयरफोर्स पायलट बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है, ठीक है, ऐसा था। इन दोनों के बीच में ही मेरे सपने घूमते थे, बट सिविलियन पायलट बनने का कभी मन नहीं किया। वो थ्रिल नहीं आता ना जब तक तुम्हारे प्लेन के नीचे तुम्हें वो फील नहीं होता, हाँ मतलब तुम्हें वो थ्रस्ट फील नहीं होता ना, तब तक वो मजा नहीं आता। तो वो एक अलग ख्वाब था। बट या, और यहाँ पे जो है बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं, ढेर सारी चीजें हम लेकर आए हैं। एक हफ्ता जो है खत्म हुआ है, इस महीने का आखिरी हफ्ता शुरू हुआ है, तो हिसाब किताब लगाने का वक्त आ चुका है। बट यहाँ पे अभी बताइए आपके हाल कैसे हैं, वीकेंड कैसा स्पेंड किया आप? मैसेज कीजिए 3311063 पर, बताइए क्या क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है, और साथ ही साथ आज के इंटेंशंस क्या है बाबू। और जैसे कि हम हर दिन बोलते हैं कि बाबू मुझे मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट
1: बिंदास होनी चाहिए, इसीलिए ना रोज रोज बिंदास मॉर्निंग करना चाहिए हमें साथ में, क्योंकि
0: भूल जाते हैं बट ना भूलने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। प्यारे प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब कितनी दूर हो क्या फर्क पड़ता
1: बहुत
0: है?
1: दूर है,
0: बहुत दूर है तो क्या हुआ, ले जाएंगे अब सैर की बात की है, ट्रैवल की बात।

0: मगर मैंने सुना है बहुत सारे लोग वीकेंड खत्म होने के बाद यही बोल रहे हैं। खान साहब की आवाज में सुनते हैं धुरंधर रिवेंज का ये गाना। काफी बढ़िया गाना यार, मतलब क्या बताऊं मैं, मुझे बहुत पसंद है गाना। काफी एक जोश है इस गाने में, जान है इस गाने में। इस गाने को प्ले करते हुए, एंजॉय करते हुए कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: This is Deepika Padukone.
4: Deepika Padukone.
3: Radio Olive 106.3.
5: I'm in number one. Radio Olive.
6: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
7: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
8: बिंदास मॉर्निंग।
9: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
10: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: दो मिनट के लिए मैं जैसे ही बोलने वाला था मुझे याद आया कि मैंने माइक ही ऑन नहीं किया. बिना माइक ऑन किए बोले फायदा क्या हो सकता है. इससे हमें क्या सीख मिलती है, कुछ भी करने से पहले ध्यान
1: देना है. ये तो वही बात हो गई कि जो है रात को मेहनत करी, लंच पैक किया, लेकिन सुबह ले जाना
0: भूल गए. और ये कितनी बार हुआ है पता है मेरे साथ. मैं
1: मेरे
0: रात
1: साथ
0: को
1: आज भी हुआ है.
0: कोई बात नहीं, होता है. मैं एक बार ओवरनाइट ओट्स बना के और बिल्कुल टिच, लोग मेरे को देख के ऐसे चौंक गए कि तू किचन में दो कदम पीछे ले लिए लोगों ने कि ये क्या हो रहा है. मैंने बोला कुछ नहीं, कुक नहीं कर रहा मैं बस ओवरनाइट ओट्स बना रहा हूँ, वही है. तो फिर बना के फ्रिज में रख दिया. मैं यहाँ आया, शो करना शुरू कर दिया. आधा शो हो गया, मुझे याद आया मैं तो ब्रेकफास्ट लाया ही नहीं. और उसके बाद कभी होता ना कि तुम्हें लगता है कि ठीक है जो लोग आ रहे हैं तुम उनसे बोल दोगे, बट उसका भी टाइम निकल गया क्योंकि जैसे ही मैंने कॉल किया वो बोले यार गाड़ी तो निकल गई. अरे यार अब क्या करेंगे. फिर मैंने खाना रेडी करने के बावजूद ऑर्डर किया.
1: और ये सबसे ज्यादा बुरी बात लगती है क्योंकि आपने इतना सारा सामान अब उस चीज में डाल दिया है.
0: Exactly.
1: बनाने के लिए
0: बिल्कुल टाइम एफर्ट सब लगता है, बट कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी ऐसी हो जाती है गलतियां. मगर ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे हम भी ध्यान से जो है मैसेजेस पढ़ेंगे. मेहरुनिसा जी का मैसेज आया है और लिखा है कि गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशी, मुझे वर्किंग डे ज्यादा पसंद है, छुट्टी का दिन पनिशमेंट डे लगता है. इतना काम हो जाता है कि लगता है कि ऐसे अच्छा तो वर्किंग डे रहता है. एक टीचर की दुविधा होता है, बट एज ए स्टूडेंट मैं यही बोलूंगा कि हमें तो वही छुट्टियां ही पसंद है. क्योंकि हॉलीडे होमवर्क तो मैं करता था नहीं, तो टेंशन मुझे होती थी नहीं. लास्ट के दो दिन टेंशन होती थी कि टीचर्स क्या बोलेंगे. बट मैंने देखा है कि कंसिस्टेंटली मैंने हॉलीडे होमवर्क नहीं किया है. मैंने सिर्फ 9th और 10th में किया था क्योंकि क्यूमुलेटिव मार्क्स ऐड होते थे और मेरे टाइम पे बोर्ड नहीं होता था. तो अच्छा CGPA सिक्योर करने के लिए.
1: बात से मैं भी अग्री करूंगी कि मुझे ना वीकेंड घर पे जब मैं रहती थी थोड़ा सा पनिशमेंट से तो लगते थे.
0: अच्छा.
1: क्योंकि मम्मी पापा सब लोग घर पे हैं,
0: पढ़ने के लिए बोलते,
1: पढ़ने के लिए बोलते, टीवी बंद करो बोलते, अलमारी जमाओ, रूम जमाओ.
0: सही में. और मैं यहाँ पे एक और चीज कन्फेस करना चाहूंगा. मैं अपने स्कूल में 12th में डिसिप्लिन कैप्टन था. और जैसे ही मैं डिसिप्लिन कैप्टन बना मैं बैच लेके मम्मी के पास गया. मम्मी बोलेगी
1: कैसे बना दिया.
0: एग्जैक्टली. तेरा स्टडी टेबल दिखा दूं मैं.
1: मेरे को भी बोलती है, मेरे को भी बोलती है.
0: और कभी कभी मैं ऐसे बैठा रहा तो मम्मी कहती है कि जाके सामान लेकर आ. तो मैं हम थोड़ा आलस दिखाता है, कह रहे मम्मी नहीं यार अभी बैठा ही दूं. तो बोलती है कि ज्यादा बोलेगा ना, तेरे स्टडी टेबल का फोटो खींच के भेज दूंगी. अच्छा ठीक है. तो
1: सारी मम्मियां बिल्कुल सेम होती है.
0: हाँ सेम टेम्पलेट फॉलो होता है हर जगह पे. और सच बताऊं तो मैं भी चौंक गया था क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे डिसिप्लिन कैप्टन बनाएंगे. मुझे तो हेड बॉय बनना था. मगर फिर मुझे समझ में आया कि स्कूल में पॉलिटिक्स कैसे चलती है.
1: कोई बात नहीं गाइस, चोर को चौकीदार बना दो.
0: स्कूल में पॉलिटिक्स बहुत चलती है मार्क्स के बेसिस में. मेरे 55 आए थे इसलिए मुझे डिसिप्लिन कैप्टन बनाया. जो हेड बॉय बना उसके 75 आए थे. 20% के चक्कर में उन्होंने एक डायनामिक पर्सनैलिटी को खो दिया. बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. मैसेज आया है. उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग. सुल्फी भाई ने लिखा है, एक मैसेज भेजा है, फोटो भेजा है, लिखा है कि एक्सेप्ट रियलिटी. व्हेन यू फाइनली रियलाइज दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ, यू विल बिकम मोर टॉलरेंट, मोर फॉरगिविंग एंड लेस जजमेंटल. बिल्कुल सही बात है. मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि लाइफ के सबसे डिफिकल्ट लेसन में से एक है एक्सेप्टेंस. चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम ना इतनी आसानी से हार नहीं मानते. अगर हार नहीं मानते तो हमें लगता है कि यार हमारे साथ भी बहुत बुरा हो रहा है, इसी एक्सट्रीम में हम जीते हैं. बट कभी कभी एक्सेप्ट करना बहुत क्लैरिटी दे देता है कि ठीक है आगे हम क्या कर सकते हैं.
1: एग्जैक्टली.
0: और उसके साथ साथ यहाँ पे अबरार भाई का मैसेज आया है. उन्होंने भी एक फोटो भेजा है हमें और लिखा है कि लाइफ इज इन मेंट टू बी इजी, इट इज मेंट टू बी लिव्ड, समटाइम्स हैप्पी, अदर टाइम्स रफ, बट विद एवरी अप एंड डाउन यू लर्न लेसंस दैट मेक यू स्ट्रांग. गुड मॉर्निंग करके आज तो जुझारू मोटिवेशन ही मिल रहा है.
1: मोटिवेशन वीक के शुरुआत में इतने स्ट्रॉन्ग.
0: बिल्कुल बिल्कुल जरूरत भी है क्योंकि वीक की
1: शुरुआत है.
0: संडे ब्लूज रहते हैं यहाँ पे थोड़े, तो उसको ठीक करने के लिए इसकी जरूरत बहुत ज्यादा जो हो जाती है. और यहाँ पे शशिकांत पाटिल जी ने मैसेज भेजा, लिखा है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर, लव, फैमिली, होम एंड गुड फ्रेंड्स. गुड मॉर्निंग करके. अरे ये क्यूट बात
1: है. आपको तो मेरे लिए भी ग्रेटफुल होना चाहिए.
0: मैं तो बिल्कुल ग्रेटफुल हूँ जी. मैं तो हर पल ग्रेटफुल हूँ कि कशिश मेरे शो में आई, मेरे साथ शो कर रही है. अगर कशिश नहीं होती तो मैं थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला कि अगर कशिश नहीं होती तो मैं अकेले ही कर लेता.
1: अकेले कर लेते और लाइफ कितनी बोरिंग होती, बोरिंग होती.
0: लाइफ मस्त है वो 10 बजे से, बट
1: अब मैं इनकी मॉर्निंग को बिंदास कर रही हूँ. मैं तड़का मार रही हूँ ना.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल. जो अजवाइन और अदरक और ये सब डाल डाल के जो तड़का लग रहा, अच्छा ऐसे तड़का जो है जिंदगी में लगना चाहिए। और यहाँ पे नाजनी जी का भी मैसेज आया है, नाजनी जी ने लिखा है ग्रेटफुल फॉर अनदर ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड अनदर ब्यूटिफुल ब्लेसिंग गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं। संधू जी का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग कतर हरपाल संधू फ्रॉम दुकान, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास मॉर्निंग हम विश करते हैं। मेरा ना कई बार मन होता है कभी कभी मैं माइक ऑन करके ऐसे बोलूं गुड मॉर्निंग कतर,
1: तो बोलो ना आपको कौन रोक रहा है,
0: वो ना हंसी आ जाती है मुझे बीच में इसलिए मैं नहीं कर पाता तो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। बट फिलहाल यहाँ पे गाना प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर जो है आपके करीब आ रहा है, दोनों हाथों को फैलाकर इसका स्वीकार जो है आप कीजिए और कहिए जीवन दास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 6:35 हो रहे हैं और हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज देख रहे थे। एक एक्टर के बारे में हम ऐसे पढ़ रहे थे और बहुत ही क्लासिक एक्टर हैं जिन लोगों ने
1: क्लासिक एक्टर है। और मुझे लगता था कि जो सीरीज जो मूवी मैंने इनकी देखी है उसके अलावा इन्होंने और कोई मूवी की नहीं है,
0: ये नॉर्मली सबको लगता है।
1: लेकिन जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला ओहो हो हो।
0: जी जी जी, हम बात कर रहे हैं सर रोवन एटकिंसन के बारे में, जिन्हें लोग प्यार से मिस्टर बीन के नाम से जानते हैं। बट अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ऑफ एयर में उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के बारे में और डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के बारे में जिसमें उन्होंने काम किया। और काफी क्लासिक, मतलब सिर्फ ब्रिटिश टीवी के ही नहीं, वर्ल्ड टीवी के अगर हम हिस्ट्री में देखें तो काफी क्लासिक वर्क जो है उन्होंने किए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी बात जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो ये है कि एक सीरीज का रिकमेंडेशन है ब्लैक एडर करके, जो लोग सर्च करके देख सकते हैं यूट्यूब में भी। आप थोड़े थोड़े शॉर्ट्स मिलेंगे आपको, थोड़े थोड़े क्लिपिंग्स मिलेंगे, बट उसके अलावा आपको पूरा देखना है तो इधर यू हैव टू गेट एप्पल टीवी और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आपको देखने पड़ेंगे। मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ, मैं तो यूट्यूब से थोड़े थोड़े क्लिप्स देख रहा हूँ। बट या आज हम एक सवाल लेकर आए हैं ब्लैकबोर्ड स्टोरीज में, जो बहुत ही क्यूट सा सवाल है, इस एक्टर से रिलेटेड सवाल है। तो सवाल ये है कि मिस्टर बीन जो सीरीज है वो कौन से साल में रिलीज की गई थी, कौन से साल में आई थी, आपको बताना है। मिस्टर बीन एनिमेटेड नहीं, ओरिजिनल जो मिस्टर बीन सीरीज है जिसमें सर रोवन एटकिंसन ने एक्ट किया है, वो कब आई थी आपको बताना है। 3311063 पर आप मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या है। और देखते हैं कि आप पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं इन सबसे कितने
1: और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि कशिश को ईयर नहीं पता। कशिश जब पैदा हुई थी उससे बहुत पहले।
0: अरे बहुत ज्यादा पहले, बहुत पहले क्या, बहुत ज्यादा पहले जो है वो सीरीज आई थी। इवन मेरे भी बहुत पहले आई थी ये।
1: फिर सच में बहुत पुरानी है,
0: बहुत ज्यादा पुरानी। वेल बताइए मुझे मिस्टर बीन जो ओरिजिनल सीरीज है वो कब निकली थी, कब लॉन्च हुई थी, कब रिलीज हुई थी। 3311063 इज द नंबर। यूजुअली हम जीके के बारे में पूछते हैं मगर आज हमने एंटरटेनमेंट के बारे में जो है,
1: तो जीके का ही वो हुआ ना, क्योंकि इतने बड़े हम अगर आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं जिनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वैलिड क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का। एंड जो भी बच्चे अभी अगर मुझे सुन रहे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, वैसे तो शायद छुट्टियां लगने वाली है, बट अगर आप स्कूल जा रहे हैं और आप हमें सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मिस्टर बीन नहीं देखा है सो प्लीज देखना चाहिए। मतलब किसी भी और सीरीज में, किसी भी और कार्टून शो में जो है उतना फन नहीं है जितना मिस्टर बीन में है।
0: बिल्कुल, और इसमें बड़ों को भी मुझे लगता है देखना चाहिए, जो जो एक्टिंग करना चाहते हैं या फिर उन सब में जिनका इंटरेस्ट है वो जरूर देखिए, क्योंकि बिना मुंह खोले कैसे हम एक्ट कर सकते हैं, लोगों को हंसा सकते हैं, उनका क्लासिक एग्जांपल। और सबसे खास बात यह है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ तो कर सकता हूँ।
1: चलो ठीक है कि इंजीनियरिंग करी लेकिन अब आर्टिस्ट वाला मुझे काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, है ना।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बताइए सवाल का जवाब क्या है तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी। और यहाँ पे नीरज श्रीधर की आवाज में बिल्लू मूवी का गाना। स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने सवाल पूछा था एक कि मिस्टर बीन सीरीज जो है वो कब रिलीज हुआ था, कब लॉन्च हुआ था, और हमारे पास थोड़े जवाब आए हैं। मगर इसके पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर बीन सीरीज जो ओरिजिनल है एनिमेटेड नहीं, सवाल मैंने उसके बारे में पूछा था, तो कुछ लोगों ने जो है एनिमेटेड का भी हमें मैसेज भेजा है, रिलीज डेट जो है मैसेज भेजा है। नहीं, वो नहीं लेंगे हम, एक्चुअल जो ईयर है वो आपको बताना है जो ओरिजिनल सीरीज का है। और ये बता सकते हैं आप, और कुछ मैसेजेस आए हमारे पास, जैसे कि हमें अनिल जी ने मैसेज किया है और अमित जी ने मैसेज किया है, दीपक जी ने मैसेज किया है, राइमा जी ने मैसेज किया है। इन सब ने जो है हमें मैसेज करके एक स्टेटमेंट चिपका रखा है, लिखा है कि द क्लासिक मिस्टर बीन लाइव एक्शन टेलीविजन सीरीज स्टारिंग रोवन एटकिंसन ओरिजिनली एयर्ड फ्रॉम 1990 टू 1995, और इसके दो फीचर फिल्म्स भी आए थे 1997 और 2007 में।
1: Okay.
0: तो बिल्कुल सही जवाब है जो आपने दिया है, 1990 है इसका डेट, 1990 में जो है मिस्टर बीन जो है लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, और बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, इसलिए आपके लिए यहाँ पे हम स्पेशली बजाएंगे तालियां। आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और कशिश से तेज हैं, इसलिए आप बिल्कुल चमक रहे हैं भाई सोने जैसे।
1: या देखो, सोने जैसे चमकना जो है,
0: हाँ,
1: ऐसे लगता आसान है,
0: हाँ,
1: ठीक है, लेकिन ऐसे मुश्किल है।
0: अच्छा।
1: अगर आप हमारी बात ना सुने तो
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हम जो है आपको हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, हम हमेशा आपसे अच्छे से बात करते हैं, कुछ ऐसा आपको मतलब वैल्यू
0: ऐड करते हैं वैल्यू एडिशन में हम बिलीव करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं भाई, वैल्यू एडिशन इज द मेन, नहीं तो ऑपरेशन नहीं।
1: yes. इसीलिए बस आप भी सुदेव की बातों की तरह शाइन करें, हम
0: जी.
1: आपके शाइन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। आप
0: जी.
1: इस सीजन में जो है शाइन स्मार्टर कर सकते हैं, जैसे
0: okay.
1: मैं हर थोड़ी देर में कहती हूँ ना, शाइन स्मार्टर दिस सीजन।
0: okay.
1: बिल्कुल वैसे, क्योंकि आप अपनी जो गोल्ड ज्वेलरी आपके पास पहले से रखी हुई है, आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं और डार्जलिंग न्यू डिजाइन ले सकते हैं, और सिर्फ मेकिंग चार्जेस आपको पे करनी पड़ेंगी। और अब एक और ग्रेट न्यूज है, इम्पोर्ट ड्यूटी जो रिवाइज हुई है इंडिया में, सो अब आप 15% तक सेव कर सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में इन कतर। तो अब आपको जाना है
0: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम में, जाना है, विजिट करना है और इस ऑफर का फायदा उठाना है। और यही बात बोलते हुए जो है हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही प्यारा गाना जो है आपके लिए यहाँ पे हम प्ले करना चाहते हैं, तो जरा इसका एक झलक दे देते हैं। जमाना जालिम तावी रोई ना,
1: यार ये मूवी एक तरफ, इस मूवी का वीडियो एक तरफ, सिंगर एक तरफ, लेकिन एआई वाले जो वीडियो इस पे बन रहे हैं, वो जिसमें एक शेर नाच रहा है, एक प्यारा सा किसी का डॉग जो
0: हस्की
1: है
0: वो नाच रहा है,
1: रे
0: बिल्कुल वो काफी अच्छा लगा। बट यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि सतेंद्र सरताज का जो पोर्शन उन्होंने मिक्स किया है, क्या बढ़िया प्लेसमेंट है उसका, मतलब जिस तरीके से उनकी गायकी के बारे में तो हम जानते ही हैं, हम बहुत बड़े फैन भी हैं, मगर जो फिट किया है इस एल्बम के साथ उन्होंने उस पोर्शन को, काफी काफी काफी बढ़िया है, मतलब रियली कमेंडेबल, मुझे सही में मजा आ गया था। और एक टाइम तक मैं ये सोचता था कि ये तो एक ही गाना है, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, ये तो अलग गाना है। आप मतलब मुझे पहले नहीं पता था कि सानू सारियां विसर गईयां रावा में, ये अलग गाना है, पूरा अलग गाना है। आई यूज्ड टू थिंक कि भाई इसके लिए शायद इन्होंने किया होगा
1: राइट,
0: बट जिस तरीके से ब्लेंड किया है, तो यहाँ पे हमें शाश्वत सचदेव को बहुत बड़ा एक कुडोज देना ही पड़ेगा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव।
1: मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे स्टेशन क्लॉक में 7:05 हो रहे हैं। yes. दोनों के गले में खुच खुच जो है थोड़ी थोड़ी है।
1: यार मतलब सच में हाँ। मैं अभी मेरा इंस्टाग्राम पूरा इसी अच्छा। एक कोट से भरा हुआ है कि हाँ। क्या इम्यूनिटी है मेरी,
0: क्या
1: मतलब 40 डिग्री में भी जो सर्दी हुई है।
0: बढ़िया, यही तो होता है लाइफ।
1: इम्यूनिटी सो गोटेड।
0: यस यस। की गर्मी भी बोलता है कि भाई तेरे लिए कोल्ड ही बेहतर है।
1: हाँ।
0: बट या कोई बात नहीं, होता रहता है। जैसे मौसम भी धीरे धीरे बदल रहा है, पूरी गर्मी की ओर हम पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले ही हैं।
1: अभी और होगी
0: तो तैयार हो जाइए। वो कहते हैं ना कि हम हर सुबह कुर्सी की पेटी बांध लीजिए।
1: हाँ, तो हम मौसम के लिए रेडी हो रहे हैं यार।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अभी का टेम्परेचर बताया है 32 डिग्री सेल्सियस, और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस। और अभी इस क्षण में हवा जो है 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरा सवाल है कि क्या ये हवा कशिश का चश्मा उड़ा के तो नहीं ले जाएगी?
1: कशिश का चश्मा ये हवा उड़ा के ले जाए या ना ले जाए, कशिश की होश जरूर उड़ा के ले गई है।
0: वाह, कहाँ गया होश?
1: होश पता नहीं कहाँ गया, क्योंकि पता है सीरियसली मुझे ना कल सर्दी हुई है।
0: अच्छा।
1: सो एसी मैंने बंद कर दिया।
0: हाँ।
1: और मैंने खिड़की खोल दी।
0: ओके।
1: खिड़की से हवा बढ़िया आ रही थी।
0: हाँ।
1: थोड़ी देर बाद गर्म हवा आने लग गई।
0: होता है।
1: ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे मोमो मैं और मैं वो स्टीमर के अंदर बैठी हुई हूँ।
0: जी बिल्कुल।
1: तो
0: भाई मोमो बन के अगले सुबह जो है ये आ गई थी। बट या देखिए, मोमो से याद आया, मोमो खाने का मन कर रहा है।
1: अरे यार सच में मन तो कर रहा है।
0: कोई नहीं, बट बात ये ना कि मैंने कई बार देखा है कि बहुत कम जगह पे जो है मोमोज बहुत बढ़िया मैंने एक्सपीरियंस किया है। बहुत ही कम जगह है, स्पेशली यहाँ पे आने के बाद।
1: यहाँ पे वहाँ पे जो था इंडिया में हमें कंपटीशन होता था कि अरे जो है दिल्ली के मोमो बहुत अच्छे हैं, या पहाड़ों के मोमो खाओ, और फिर हम बोलते थे नहीं नहीं भोपाल में यहाँ के मोमो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद मोमो खाने के लिए तरस गई हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यार अब आप जरा जो लोग हमें सुन रहे हैं, बताइए आपके फेवरेट मोमो स्पॉट्स कौन से हैं, मोमोज सबसे बढ़िया आपके हिसाब से कहाँ मिलते हैं। एक दो जगह तो मुझे पता है, बट आपके जो है सजेशन हम जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ बताइए आपके लिए मौसम कैसा है, बाहर क्या नजारे दिख रहे हैं आपको, जरा फोटो खींचिए, भेजिए हमें, दिखाइए हमें बाहर के नजारे, क्योंकि हम तो स्टूडियो के अंदर बैठे हैं।
1: बिल्कुल, हमें तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे स्टूडियो में खिड़की भी नहीं है। हाँ। और जब हम सुबह आते हैं
0: बस एक दूसरे का चेहरा देखते हैं,
1: एक ही आंख खुली रहती है हमारी।
0: मेरे तो दोनों बंद रहते हैं, मैं तो सो ही जाता हूँ। बट या आप बताइए हमें बाहर कैसा चल रहा है माहौल। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं, जैस्मिन और रेबेल और शाश्वत सचदेव की आवाज में सुनते हैं मैं और तू। अब ये गाना मूवी में कब आता है जिन्हें पता है
1: उन्हें पता है।
0: स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Hello,
5: mein
6: hoon Neena Gupta.
7: Radio.
6: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
8: ओलिव्स

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: लॉन्ग ड्राइव में जाने का मन बहुत है मगर वर्क वीक शुरू हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं हम?
1: कार भी तो नहीं है,
0: लाइसेंस भी तो नहीं है, इसलिए तो हम गाड़ी नहीं चला सकते। चलानी नहीं आती वो और अलग बात है,
1: अगर होती और चलानी आती भी तो भी यहाँ ऑफिस में इतना काम है कि हम सुदेव को नहीं जाने देते।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग ड्राइव पे तो छोड़ ही दो, एक ही लॉन्ग ड्राइव आता है मुझे, दोहा टू बकरा, बकरा टू दोहा,
1: वो ही बहुत लॉन्ग लगता है यार। देखो
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे संगीता जी ने हमें एक मैसेज किया था, लिखा है कि गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशिश, संगीता हियर, आई जस्ट हर्ड दैट सुदेव वाज डिसिप्लिन कैप्टन इन 12th and that brought back memories from my discipline captain days back in the late 90s. Although my reasons were very different, I was always very disciplined and I still am. Anyway, is wishing everyone a very good morning and a great great week ahead karke. Thank you so much, thank you so much. Bahut acha laga ki aapne bataya, mujhe message kiya. और देखिए मैं ही एक इकलौता डिसिप्लिन कैप्टन था, मुझे लगता है पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री में जो सबसे अनडिसिप्लिन था।
1: सो मैं वही बोल रही थी कि चोर को ही जो है चौकीदार बना दो, तो कोई होगा ही नहीं जो सबसे ज्यादा बदमाशी करता है
0: जी,
1: उसको ही अगर बना दो डिसिप्लिन इन चार्ज तो कोई फिर बचेगा ही नहीं ना।
0: इस चीज ने बहुत हेल्प भी किया तो मुझे थोड़ा फिर संभलना पड़ा। ठीक है, हम थोड़ा सुधर गए उसके बाद। और यहाँ पे मोहम्मद आमिर भाई का मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव एंड कशिश जी, आई मिस्ड यू बोथ फ्रॉम टू डेज, हैप्पी संडे, अ न्यू डे मींस न्यू होप, न्यू पीस एंड न्यू ब्लेसिंग्स, मे योर संडे बी काम एंड जॉयफुल एंड ट्रूली रिफ्रेशिंग, थैंक यू सो मच जी, आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास संडे जो है हम विश करते हैं। सामी भाई का मैसेज आया है, फोटो भेजा है उन्होंने और लिखा है अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, सब बढ़िया है और काफी प्यारी फोटो जो है आपने भेजी है। और उसके साथ साथ मुझे एक मिनट, हाँ एक और मैसेज आया, रवि शाह जी का मैसेज आया है, उन्होंने हमें एक सजेशन दिया है मोमो के लिए, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, जरूर चेकआउट करेंगे हम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही बात बोलते हुए जरा हम आगे बढ़ते हैं और जबरदस्त हिट प्ले करते हुए कहते हैं
1: जियो बिंदास,
0: और बहुत प्यारा गाना है, बहुत क्यूट गाना है, इस क्यूटेश गाने के साथ एंजॉय करना मत भूलना, ठीक है, और गुनगुनाना मत भूलना। रेडी हो आप?
1: रेडी हूं,
0: प्ले करने जा रहा हूं मैं, 3-2-1 बोलो,
1: 3-2-1 प्ले।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूँ आपकी कशल।
0: और यहाँ पे भाई वक्त हो चुका है फिटनेस के बारे में बात करने का। फिट है तो हिट है में।
2: फिट है तो हिट है।
0: आज हम फिट है तो हिट है में घर के अंदर के हरियाली के बारे में बात करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हरियाली होनी चाहिए घर के अंदर। ऐसा मतलब ये नहीं कि ग्रीन पेंट मार के ग्रीन चीजें रखेंगे,
1: बेडशीट बिछा लेते,
0: ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इंडोर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। या इंडोर प्लांट्स मेंटल फटीग को कैसे रिड्यूस करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सुनिए, सुनाऊं?
1: सुनाओ ना।
0: आपकी इजाजत है क्या?
1: अरे बिल्कुल है,
0: बिल्कुल। तो फिर सुना देते हैं। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि इंडोर प्लांट्स और नेचुरल ग्रीनरी का एक्सपोजर ब्रेन पर कामिंग और रिस्टोरेटिव इफेक्ट डाल सकता है। जब हम आर्टिफिशियल या फिर एक स्क्रीन हैवी एनवायरनमेंट में रहते हैं या फिर काम करते हैं तो मेंटल फटीग जो है जल्दी बिल्ड हो जाता है।
1: हाँ, राइट।
0: अब प्लांट इस एनवायरनमेंट को विजुअली सॉफ्टन करते हैं और ब्रेन को नेचुरल ब्रेक का एक सिग्नल भी देते हैं। और स्टडीज ये भी दिखाती है कि इंडोर ग्रीनरी जो है परसीव्ड स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करती है, अटेंशन रिस्टोरेशन में आपको हेल्प करती है, ओवरऑल मूड और कामनेस को भी इम्प्रूव करती है। और इसका रीजन ये है कि नेचुरल एलिमेंट्स ब्रेन के अटेंशन सिस्टम को जेंटली बहुत ही प्यार से एंगेज करते हैं बिना ओवरलोड किए। इससे जो है हमारा कॉग्निटिव फटीग जो है वो स्लो डाउन हो जाता है। और सिंपल चीजें हम कर सकते हैं जैसे कि अपने डेस्क पर एक स्मॉल प्लांट रखना, रूम में और भी इंडोर प्लांट्स रखना, वर्क स्पेस में नेचुरल विजुअल एलिमेंट्स रखना। ये सटल मगर कंसिस्टेंट इफेक्ट्स बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं।
1: आई अग्री।
0: तो यही मैं बोलूंगा कि एक छोटा सा एक इंडोर प्लांट आप लीजिए, आप रखिए अपने घर में अपने रूम में, ताकि आपको भी साइज अच्छा
1: लगता रहे। और मैं सच में, मैं जब कतर आई थी मुझे ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े रूम में मुझे अकेले रहना पड़ रहा है, बट फिर मैं एक प्लांट लाई। अच्छा। फिर उस एक प्लांट के लिए एक और प्लांट लाई। क्या इसे इन्हें भी तो दोस्त की जरूरत है, मैं तो ऑफिस में रहती हूँ, उसके लिए एक और प्लांट लाई। तो अब मेरे पास जो है प्लांट की एक फैमिली है जिनके घर में मैं रहती हूँ, सो अब बढ़िया लग रहा है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक इम्पोर्टेंट बात मैं भी बताना चाहती हूँ कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम प्लांट्स लेकर आ गए हैं तो हम बहुत सारा पानी उन्हें दे दें, या केयर के नाम पे हम बहुत सारा उनपे पिस कर दे, पर ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। प्लांट्स की भी अपनी जरूरतें होती हैं, उनको जितना चाहिए आप उतना ही पानी दीजिए, उतना ही सनलाइट दीजिए। इंडोर प्लांट है, मैंने पता है क्या किया, मैंने अपने इंडोर प्लांट को, क्योंकि वो बेचारा सैड हो रहा था तो उसको जो है खिड़की के पास रख दिया
0: और
1: वो मुरझा गया, उसमें उसको चाहिए नहीं थी सनलाइट।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें भी याद रखनी बहुत जरूरी है। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: सी यू बिंदास।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे जो है काफी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है हम देना चाहेंगे। दोहा 2026 GCC गेम्स में कतर ने,
1: मैं अपना नाम ना लूं,
0: मैं भूल गया था,
1: मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हो,
0: मैं थोड़ा उस साइड घूम के बैठा हुआ था।
1: आई नो आप स्पोर्ट्स के लिए बहुत एंथुसियास्टिक रहते हो, लेकिन मैं अपना नाम ना बताऊं, सबको पता है, सबको, सब मुझसे प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं बताएंगे। मैं बताऊंगी, मैं हूँ आपकी कशिश। अब कंटिन्यू।
0: अच्छा, तो 2026 जीसीसी गेम्स में कतर ने हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दी है। टोटल 134 मेडल्स जो हैं कतर ने जीते, जिसमें 48 गोल्ड, 50 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, और ये जीतकर ओवरऑल डोमिनेंस जो है कतर ने अपना स्पोर्ट्स में दिखाया।

0: आया है और इस एडिशन में सबसे ज्यादा मेडल्स जीतकर टूर्नामेंट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन के बावजूद उन्होंने टॉप पोजिशन को भी मेंटेन किया। सेरेमनी में हिज एक्सेलेंसी शेख जोआन बिन हमद अल थानी ने टीम कतर को ऑनर किया और कहा कि ये सक्सेस हार्डवर्क प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम का रिजल्ट है। सऊदी अरेबिया जो है सेकेंड आया विद 82 मेडल्स, बहरीन थर्ड आया विद 63 मेडल्स और ओवरऑल गेम्स में गल्फ कंट्रीज के बीच स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन और यूनिटी दोनों को देखने को हमें एक मौका मिला। और एथलेटिक्स और शूटिंग जैसे स्पोर्ट्स में कतर ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। एथलेटिक्स में 34 मेडल्स आए हैं और उसके साथ साथ शूटिंग एंड आर्चरी में 26 मेडल्स। अब इससे यही पता चलता है कि स्ट्रक्चर ट्रेनिंग और प्रिपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और यही बात बताते हुए हम जो है आगे बढ़ते हैं और जाते जाते जाते हम यही बोलेंगे कि थोड़ी देर में उस पार जब हम आएंगे गानों के उस पार तो ऑलिव अपडेट्स लेकर आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हम आपको सुनाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी जो हैं अगले आवर में वेट कर रहे हैं कि मैच के बारे में क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए क्रूशियल स्टेज में जो है लीग पहुंच चुका है जहां पे प्लेऑफ शुरू होने वाले हैं, क्वालिफायर शुरू होने वाला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस सब का हिसाब फैसल नहीं हम लगाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जी बिंदास।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
6: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
7: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
8: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: तुरंत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. Oh, son.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi, and you're listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: और यहां पे भाई बहुत ही तगड़ा मैच हुआ था कल। क्या बताएं हम, मतलब बहुत ही बढ़िया मैच लखनऊ और पंजाब का। लखनऊ ने बहुत कोशिश की पंजाब को ऐसे रोक के रखने की, मगर पंजाब ने अपनी जगह बना ली भाई टॉप फोर में। और अगर हम बात करें स्कोर के बारे में तो लखनऊ ने पहले बैटिंग किया, 196 रन जो है उन्होंने स्कोर किए, 6 विकेट उनके गिर गए थे। और उसके बाद बैटिंग आई पंजाब की,
1: वाह वाह, और फिर
0: 200 रन उन्होंने बनाए, वो मैच जीत गए। हाँ। 3 विकेट उनके खो गए थे। मगर यहाँ पे भाई बात बोलनी हमें पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी श्रेयस अय्यर की। चेस करते हुए उन्होंने 101 रन जो है स्कोर किया, 101 नॉट आउट। और प्रभसिमरन सिंह ने 69 रन स्कोर किए, कूपर कनॉली ने 18 रन स्कोर किए। और अगर हम देखें इनके बारे में, यानी कि लखनऊ के बारे में, लखनऊ के बैटिंग में जॉश इंग्लिस ने 72 रन स्कोर किया था। उसके बाद एक मेजर स्कोर आयुष बदोनी ने किया, वो था 43 रन का। उसके बाद ऋषभ पंत ने 26 रन स्कोर किए, अब्दुल समर ने 37। तो मेजर एक बहुत बड़ा बैटिंग ब्रेक थ्रू आया नहीं उनके साइड से। और यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पंजाब के बारे में तो उनके कैप्टन ने क्या बढ़िया कप्तानी पारी खेली है। 101 रन उन्होंने बनाया, 198 का स्ट्राइक रेट था उनका। और मैं यही बोलना चाहूंगा कि यार कोई बात नहीं, होता है।
1: मैं बस इसीलिए देख रही हूँ, मैं बस सुदेव बोलते जा रहे हैं और मैं उन्हें बस उन्हें देखती जा रही हूँ कि ठीक है बोलो गाइस, कोई बात नहीं। एटलीस्ट
0: मैं यहाँ पे
1: अब बाकी कोइंसिडेंस की तारीफ करिए। आप
0: कोइंसिडेंस बताना चाहूंगा कि चेन्नई 7th पोजीशन है, 7th तला फॉर रीजन।
1: अब किसी भी पोजीशन पे होगी क्या मतलब है, जब आउट ही हो गए तो
0: उससे फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि वो कोई होता रहता है। देखिए टूर्नामेंट में हार जीत होती रहती है, आगे पीछे होता रहता है, कोई बात नहीं। मुझे तो सच बताऊं तो एक्सपेक्टेशन इतनी भी नहीं थी कि हम थोड़ा सा एक वो देंगे लास्ट में। बीच में चेन्नई ने जो है अपना परफॉर्मेंस ऑन ट्रैक कर दिया था, अच्छा खेल रहे थे, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था। लास्ट में भी अगर वो मोमेंटम वो मेंटेन कर पाते तो भी टॉप फोर में हो जाते।
1: हो गया।
0: बट मुझे लगता है यार पूरा कायनात चाहता था कि चेन्नई यहाँ से बस चेन्नई जाता था।
1: को तो ख्याल भी काफी है गाइस, कोई
0: जी बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं।
1: पर मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मम्मी पापा के बीच में लड़ाई हो गई, ठीक है, और दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं करी, ईगो जो है वो जीत गया और चेन्नई फिर हार गई।
0: कोई बात नहीं। वैसे आज हम बात कर रहे थे क्वालिफायर 1 के बारे में। मैं याद दिलाना चाहूंगा, ऐसा कई बार हुआ है कि क्वालिफायर में आई है बैंगलोर और वहां से वापस गई है, तो कुछ भी हो सकता है।
1: इतनी बार क्वालिफायर में आई है और कई बार वापस गई है, लेकिन एक बार फिर से आ तो गई ना।
0: कोई बात नहीं, अगर वैसे तो वैसे देखे तो उस रिकॉर्ड की बात करे तो हम, मैं बोलना चाहूंगा चेन्नई और मुंबई का तो बैंगलोर से बहुत ज्यादा ही है
1: यार। देखो वो हो गई है कल की बात,
0: अच्छा
1: अब तो नहीं है ना।
0: अच्छा अच्छा,
1: टूर्नामेंट भी नहीं है।
0: अच्छा अच्छा,
1: कोई बात नहीं,
0: एक बार जीत के आ गए, घमंड देखो लोगों का।
1: घमंड नहीं है, देखिएगा इस मेहनत करिए और पहुंचे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं।
1: बुरा लगा देखो कि हम थाला को खेलते हुए नहीं देख पाए, उसका तो दुख है
0: बिल्कुल।
1: पर अगर सुदेव को परेशान करने की बात है तो क्यों भाई,
0: मैं तो
1: गई।
0: उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब क्वालिफायर से बैंगलोर बाहर हो जाएगी।
1: आप पता है अभी साहब पहले अपनी टीम को जिताने के लिए खेल रहा था, ठीक है कि ये चेन्नई जीतनी चाहिए, ऐसे जीत सकती है, अब ये बैंगलोर को हराने के लिए खेल रहा है।
0: नहीं नहीं, मैं किसी को हराने के लिए नहीं खेल रहा, मैं बस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था। तो
1: सरकास्टिक हो गए जो स्टैटिस्टिक पढ़ी है इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं,
0: देखते हैं क्या होता है।
1: कोई बात नहीं, अभी आज किसका मैच है ये आके हम बताएंगे आपको थोड़ी सी देर में। पॉइंट्स टेबल और विस्तार से उस पर डिस्कशन करेंगे और लोगों के जख्मों पे नमक छिड़केंगे, लेकिन थोड़ी सी देर में
0: देखते हैं किसके जख्म में एंड में नमक छिड़केंगे। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: कल हो ना हो मूवी का गाना हमने सुना, आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑल 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश।
0: स्टेशन क्लॉक में 8:31 हो रहे हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे थे क्रिकेट के लीग के बारे में, और अगर हम स्टैट्स के बारे में बात करें तो कुछ चीजें जो है डिटेल जो है हम आपको बताना चाहेंगे। और अभी के हिसाब से जो सबसे लीडिंग रन स्कोरर है वो है इस बार साई सुदर्शन, और 638 रन जो उन्होंने स्कोर किए हैं गुजरात से हैं, और शुभमन गिल जो है सेकेंड पोजिशन पर है, 616 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और 13 मैचेस ही खेले हैं, बट मुझे लगता है काफी अच्छा परफॉर्मेंस गुजरात के बैट्समैन ने जो है दिखाया है, दोनों ने दिखाया है। वैभव सूर्यवंशी जो मात्र 15 साल के हैं उन्होंने 13 मैचेस में 579 रन स्कोर किए हैं और वो फोर्थ पोजीशन में हैं इस लिस्ट में। और अगर हम विकेट्स की बात करें, विकेट टेकर्स की बात करें, तो भुवनेश्वर कुमार जो बैंगलोर के हैं, सच बताऊं तो भुवी के लिए रिडेम्पशन है। एक टाइम पे सबको लगा था कि भाई भुवी जा चुका है अब वो नहीं आएगा खेलने, बट फिर से
1: कमबैक किया है
0: और एक पॉइंट में बहुत ही क्रूशियल मैच में उन्होंने बैंगलोर को जिताया भी था।
1: सो 2026 में किसी और का कमबैक हो या ना हो, इनका जरूर हुआ है। एंड सरप्राइजिंगली गुजरात से इतनी उम्मीद, देखो मैंने तो नहीं की थी, बट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्मेंस सारे ही प्लेयर्स ने दिखाया है।
0: मैं ये बताना चाहूंगा कि जब से गुजरात का टीम बना है तब से लेके अब तक अगर हम देखें तो काफी बैलेंस्ड टीम रही है, अच्छे बॉलर्स रहे हैं, अच्छे बैट्समैन रहे हैं, काफी एक्सप्लोसिव बैट्समैन रहे हैं जो बड़े बड़े स्कोर्स बनाते हैं, बड़े बड़े रन बनाते हैं।
1: ये बात जो है चेन्नई के लिए, मुंबई के लिए बोली जाती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे एक नया
0: दौर जो है
1: वो इमर्ज हो रहा है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: दिस इज वेरी नाइस और अब मजा आ रहा है।
0: हाँ, एक्चुअली मजा आ रहा है।
1: वो आइकन्स कुछ बन गए थे जिनके लिए हम ये लीग देखा करते थे, लेकिन अब और नया कौन आइकन बन के आएगा इसीलिए देख रहे हैं।
0: मगर एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि जब से लीग स्टार्ट हुआ मैं तब से देख रहा हूँ, तो पहले के 5 साल जो थे, पहले के 5 साल में लीग में जो प्लेयर थे हर टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस, लेजेंडरी प्लेयर्स नेशनल टीम से, इंटरनेशनल टीम से, हर जगह से जो थे, तो मुझे लगता है कि वो और अलग था। एक तो नया जो है आया था, लीग आया था, हम उसे एक्सपीरियंस कर रहे थे, और उस टाइम के जितने भी स्टार प्लेयर्स थे, चाहे वो तेंदुलकर हो, धोनी हो, माइकल हसी हो, मैथ्यू हेडन हो, शेन वॉन हो, सब लेजेंडरी प्लेयर्स सारे अलग अलग टीम्स में खेल रहे हैं। इवन इंडियंस की अगर हम बात करें तो धोनी एक टीम में, सचिन एक टीम में, द्रविड एक टीम में, गांगुली एक टीम में, युवराज एक टीम में, तो इतना वाइड स्प्रेड जो था वो हमें देखने को मिला और वो अलग एक माहौल था। और ऑब्वियसली अभी जो है बहुत चेंज हो चुका है, नए प्लेयर्स आ चुके हैं, और इससे यही पता चलता है कि इस लीग के कारण कितने नए प्लेयर्स को भी आगे आने का मौका
1: मिल रहा है। इससे जो है सिलेक्टर्स को पता चलता है कि यार चलो हम इनको भी अब हमारी वर्ल्ड कप वाली टीम में
0: ऐड कर सकते हैं,
1: एंड प्लेयर्स को दूसरी टीम्स के साथ, दूसरी कंट्री की टीम्स के साथ खेल के ये समझ आ जाता है कि अच्छा इस चीज में कमजोर है, इसे हम यूज करेंगे।
0: बट इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि जब से T20 क्रिकेट आया है तब से एक चीज थोड़ा पीछे चला गया है, वो है ODI क्रिकेट। ODI क्रिकेट जितना पहले होता था उतना नहीं हो रहा है, या फिर उतना हम नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि ODI वापस वो एक कमबैक दिखाए प्लीज, क्योंकि बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है। और यहाँ पे सरप्राइजिंगली एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि हम सबको लगा कि भाई क्रिकेट का जो ट्रू फॉर्मेट है विच इज टेस्ट, वो खत्म हो चुका है, बट नहीं, पिछले कुछ सीरीज को देखकर हमें ये जरूर पता चल चुका है कि टेस्ट क्रिकेट विल बी देयर। टेस्ट क्रिकेट जरूर क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टेस्टमेंट रहेगा,
1: बैकबोन जो है वो कह सकते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट है, वो कहीं नहीं जा रहा है, बिकॉज उतने ही बढ़िया तरीके से प्लेयर्स खेल रहे हैं। ODI की जिसे हमने बात करी, सो उसका भी जो एक लिस्ट है वो जारी हो गई है प्लेयर्स की, एंड वो देख के भी काफी खुशी हुई थी। इस पर भी हम कभी डिटेल में बात करेंगे,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन
0: बिल्कुल।
1: आज अभी बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन से टीम्स के बीच में मैच है। सो आज संडे है तो ये प्रथा है कि दो मैचेस खेले जाएंगे। सो मुंबई और राजस्थान के बीच में पहला मैच है, उसके बाद कोलकाता और दिल्ली के बीच में दूसरा मैच है। ये ऐसा है कि आंखों को थोड़ा रेस्ट दे दो, देखना अच्छा। है मैच तो देख लेना, वरना अच्छा। आंखों को रेस्ट दो, आज कोई जरूरत नहीं है देखने।
0: हाँ, वैसा वैसा कोई गल नहीं, बट कोई बात नहीं, अब मुंबई थोड़ा पीछे हो गई इस बार, वैसे जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा कर नहीं पाई। इवन टीम अगर हम देखें ऑन पेपर काफी अच्छी थी, बैलेंस टीम, बुमराह जैसे बड़े बड़े बॉलर हैं, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े बड़े बैट्समैन भी हैं, तो बैलेंस टीम जरूर थी बट मुझे लगता है कि प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सीजन मुझे लगता है वो काफी अच्छी तैयारी के साथ आएंगे। और ये कई बार हमने देखा है कि मुंबई अगर एक सीजन में फॉल्टर करती है तो नेक्स्ट सीजन में अच्छे से आती है, एंड देखते हैं क्या होता है फिलहाल अभी। और फर्स्ट क्वालिफायर भी जो है कंफर्म हो चुका है, फर्स्ट क्वालिफायर भी कंफर्म हो चुका है, फर्स्ट क्वालिफायर होने वाला है बैंगलोर और गुजरात के बीच में।
1: इसी के साथ पॉइंट्स टेबल का क्या है वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट पोजीशन पे बैंगलोर है, सेकंड पे गुजरात है, थर्ड पे हैदराबाद है, फोर्थ पे पंजाब है, फिफ्थ पे राजस्थान है, एंड सिक्स
0: पंजाब है, पंजाब है हो गया हाँ, बट टॉप फोर ही काफी है हमें,
1: फोर ही काफी है ना,
0: फोर ही काफी है हमें, फोर ही काफी है क्योंकि उससे ज्यादा जानने की अब
1: कैसे कैसे बोला है ना सीधे, बस हो गया, बस हो गया, कोई जरूरत नहीं बोलने की सेवंथ पोजीशन पे चेन्नई है।
0: नहीं मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2020 में चेन्नई लास्ट में थी, तो I have been through worse, so it's not a problem.
1: It's okay.
0: वैसे यहाँ पे एक चीज जो क्रूशल है वो ये है कि अगर बैंगलोर और गुजरात के बीच में अगर बैंगलोर ये मैच हार जाती है तो बैंगलोर के पास एक और मौका रहता है क्वालिफायर टू में हैदराबाद के साथ खेलने का। अब वो डिसाइड करेगी पंजाब किस टीम के साथ खेलेगी। अब बैंगलोर और गुजरात में से जो हारेगा वो पंजाब के साथ खेलेगी, उसमें से जो जीतेगा वो हैदराबाद के साथ खेलेगी, फिर फाइनल डिसाइड होगा।
1: देखो इन्हें ये
0: जब भी
1: कोई ऐसा कैलकुलेशन
0: जब
1: सुने
0: भी कोई हसीना
1: इससे मुझे याद आया कि हमें गाना सुना देना चाहिए।
0: मेरे दिल के तार बजे बार बार, मेरे दिल के तार बजे बार बार, ओ ये
1: पहली बार ओ ये कितना अच्छा सुर में किसी ने गाया है।
0: चन चन नम फिलहाल देखते हैं क्या होता है, कौन कितना बड़ा दिग्गज है। अब मैदान जंग में जो है वक्त आ चुका है प्रूफ करने का, और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही क्यूट गाना सुनते हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी की आवाज में गुड्डू रंगीला मूवी से। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: Listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Jackman ki power-packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
2: Kya aap soch rahe hain ki, what do I do with that old gold bangle in my locker? Toh Malabar Gold and Diamond Smart Exchange ke saath, exchange your old 22-carat gold jewellery purchased from anywhere for dazzling new designs, sirf making charges pay karke. Aur ab, ek aur great news. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ
0: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश
3: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
0: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर
4: इब्राहिम भाई
5: ईद मुबारक
4: तौफीक चाचा ईद मुबारक
6: आप
4: चाचा मैं इब्राहिम हर जुम्मे रात आता हूँ तुम्हारी बिरयानी खाने को
6: अरे मियां तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं तब आप भूल गए बिरयानी भी
7: एक काम करते हैं इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं
8: हेलो हेलो तौफीक चचा की बिरयानी में
9: शाही जीरा सबसे खास होता है मियां
8: क्यों चचा
10: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
11: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक्ड टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Pradma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Pradma, Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
7: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
8: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network. Radio.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है. आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव
1: और मैं हूं आपकी कशिश.
0: और यहां पे जो है टेक न्यूज के बारे में हम एक खबर लेना चाहेंगे. बहुत ही बढ़िया खबर हमारे हाथ में लगी है. गर्मा गर्म खबर.
1: टेक ही लगा के टेक न्यूज के लिए वेट कर रही थी मैं.
0: बात कर दिया आपने.
1: वर्ड प्ले का इंतजार कर रही थी.
0: बस बहुत बढ़िया. सुनील पाल कॉमेडी कर

0: तो गूगल आईओ 2026 में जेमिनी ऐप के मैक ओएस के लिए दो मेजर फीचर्स प्रीव्यू किए गए थे जो समर में लॉन्च होने वाले हैं। जेमिनी स्पार्क जो एक पर्सनल एआई एजेंट होगा जीमेल डॉक और वर्कस्पेस एप्स के साथ इंटीग्रेट करके टास्क ऑटोमेट करने के लिए और एक थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ भी ये एक्शंस परफॉर्म करेगा। अच्छा। फिर आता है स्पार्क मैक ओएस पर लोकल फाइल्स और डेस्कटॉप वर्कफ्लो को भी हैंडल करेगा जिससे यूजर्स अपने कंप्यूटर के टास्क को ऑटोमेट कर सकेंगे और एग्जिस्टिंग स्क्रीन कॉन्टेक्स्ट फीचर के साथ इसका यूज जो है होगा। समझ में नहीं आया ना?
1: नहीं नहीं, मेरे को आया, मेरे को बस ये समझ आया कि अब मेरे ऑफिस का काम और आसान हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल। और एक नया वॉइस एक्सपीरियंस भी आएगा जिसमें यूजर्स जो है नेचुरल स्पीच में बोल सकते हैं और जेमिनी उसको क्लीन स्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। टाइपिंग में एरर्स या की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मैक पर लॉन्ग प्रेस फंक्शन के साथ की से एक फ्लोटिंग इनपुट जो है यूआई में आएगा जहां स्पीच इनपुट हम रियल टाइम में प्रोसेस करके कर्सर के पास डायरेक्टली उसका आउटपुट जो है इंसर्ट हो जाएगा। डेमो में ये दिखाया गया था कि फाइंडर से फाइल सेलेक्ट करके वॉइस से ईमेल डिक्टेट करने पर जेमिनी ऑटोमेटिकली जीमेल ड्राफ्ट भी क्रिएट कर सकता है। ये जो हल्की हल्की खुमारियां यहाँ पे जेमिनी ही दिखा रहा है,
1: आए हाय मजा ही आ गया,
0: मजा आ गया, वाह वाह वाह। फिलहाल ये गाना सुनते हैं राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में, बट काफी बढ़िया इनोवेशन आ रहे हैं और दोनों हाथों को ऐसे खोल के खुली बाहों से जो है इसका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं
1: जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
2: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
3: Marhaba Doha. Something big has just opened at Doha City Center. Your favorite fashion brand R&B has opened a newer, bigger and greater fashion destination at Doha City Center. Celebrate this Eid in style with R&B at the newly opened store and shop the latest fashion across women, men and kids. And here's your opening surprise. Shop for 200 riyal and get a free stylish duffel bag. Yes, absolutely free. But hurry, this is a limited opening celebration offer. Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
4: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

जब डाइट कोक जो है वो जेंजी इसका फेवरेट ड्रिंक नहीं बना था, उससे पहले ये गाना रिलीज कर दिया गया था। मतलब देख रहे हो आप विजन आगे का। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। और देखिए यार, मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि आजकल बहुत सारी चीजें लॉन्च की जाती है जेंजीज के माइंड सेट को ध्यान में रखते हुए। ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है, पहले भी जो जनरेशन का माइंडसेट होता था उसको ध्यान में रखकर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप की जाती थी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो है उस तरीके से बनाई जाती थी। लेकिन अब स्पेसिफिकली क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है उभर के आया है जेन जी, जो हमारा समाज है सो अब बहुत सारी चीज़ें उसके हिसाब से हो रही हैं एंड मूवीज़ भी उसी हिसाब से बन रहे हैं, कमर्शल्स उस हिसाब से बन रहे हैं। एंड एक इसका मेजर एग्जाम्पल जो है वो अभी रिसेंटली कुछ मूवीज़ हैं, सैयारा देख के जेंजीज जो है बहुत फूट फूट के रोए थे। मतलब इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कुछ ऐसी मूवीज पहले भी रह चुकी हैं जो और ज्यादा इमोशनल थी, लेकिन सैयारा देख के जो है रो रहे हैं। और वैसे ही अभी एक नई मूवी आई है, चांद मेरा दिल, एंड अनन्या पांडे ने सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा काम किया है। मतलब कुछ लोगों को इरिटेटिंग अभी भी लग रही हैं वो इस मूवी में, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग जो है वो करी है। लक्ष्य ने एज़ यूजुअल बहुत अच्छी एक्टिंग करी है एंड कहीं ना कहीं एक जेंजी लव स्टोरी जो है वो दिखाने की कोशिश की गई है, पर कुछ तो ऐसे कमी सी लगती है। पर काफ़ी पिछला जो टाइम था उसमें जैसी मूवीज़ आ रही थी उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी है। सो अगर आप देखने का सोच रहे हैं चांद मेरा दिल, तो एक बार ज़रूर देखिए। और अगर आपने देख ली है तो आपका क्या रिव्यू है वो मुझे ज़रूर से बताइए। और इसके साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए, चांद जो है वो किसी भी गाने में हो, किसी भी जगह हो, किसी भी फोटो में हो, खूबसूरत बना देता है वो चीज़ों को। बस इसी चीज़ का एक एग्जाम्पल देते हुए एक खूबसूरत सा गाना जिसमें चांद आता है वो जो है मैं आपको सुना रही हूँ। गाने का नाम है चांद देख लेना, तो इस चांद को जो है देखते देखते एक गाना सुन लेना। बाकी बिंदास मॉर्निंग में मैं हूं आपकी कशिश। अगर आप भी मेरी तरह स्नीकर हेड है, यानी आपको स्नीकर्स का, जूतों का शौक है, सो थोड़ी सी देर में आपके लिए एक अमेजिंग वाली खबर मैं लेकर आ रही हूँ। फिलहाल ये अमेजिंग गाना एंजॉय कीजिए और मेरे साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: ठन के तो देखो मैं आई हूँ लेकिन मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। हाँ जी, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, आपकी बेसिक वाली मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए आ गई हूँ। एंड मैंने ना थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि अगर आप मेरी तरह स्नीकर हेड हैं, यानी आपको जूते और हील्स और इन सब चीज़ों का काफ़ी शौक है, तो अब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कतर कैलेंडर ने ना फर्स्ट स्नीकर कौन दोहा जो प्रोग्राम है वो अनाउंस कर दिया है। 29th से 31st में दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में जो है ये होने वाला है, हाला समर कैंपेन के अंडर। अब देखो यार, इवेंट का फोकस जो है वो स्नीकर कल्चर और स्ट्रीट वेयर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पर होगा। और रेड बुल जो है वो इसका ऑफिशियल एंटरटेनमेंट पार्टनर जो है वो है। एंड 7000 स्क्वायर मीटर स्पेस में इवेंट जो है 7 इंटरैक्टिव जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें किड जोन, स्केट पार्क, बास्केटबॉल कोर्ट और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, ग्रेफिटी एक्टिविटी अगर मैं बात करूँ तो वो भी यहाँ पर शामिल है। डेली लाइव एंटरटेनमेंट होगा जिसमें डीजे शो, बीट बॉक्सिंग, ब्रेक डांस, हिप हॉप, लाइव बैंड्स, मैस्कॉट परेड और रोमिंग परफॉर्मेंसेज जो हैं वो इंक्लूड होंगे। विजिटर्स के लिए स्नीकर मार्केट प्लेस, रेयर कलेक्शन, लिमिटेड एडिशन ड्रॉप्स, विंटेज कार डिस्प्लेज और फूड स्टॉल्स भी अवेलेबल होंगे। तो साथ में जो है आप बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन जो है वो भी इंजॉय कर सकते हो। इवेंट में पैनल डिस्कशन और इंडस्ट्री टॉक्स भी होंगे और एंट्री फी के साथ जो है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। वीआईपी एक्सपीरियंस जो है वो 500 कतरी रियाल में जो है अवेलेबल होगा। सो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा इंथुजियास्टिक जो है स्नीकर कलेक्टर हैं, या आपको बहुत पसंद है स्नीकर्स के बारे में जो है बात करना या अमेजिंग उनकी हिस्ट्री जानना, सो मुझे लगता है कि ये इवेंट आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका रहने वाला है, एक ज़बरदस्त मौका रहने वाला है। फिलहाल ज़बरदस्त बोलते ही मुझे ज़बरदस्त हिट्स की याद आ जाती है।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो।
0: स्नीकर की बात करते करते स्पीकर पे हम आ चुके हैं। इस गाने का नाम है स्पीकर फट जाए।

किसी के कैरेक्टर से इतना रिलेट नहीं किया मैंने जितना इस मूवी में अमृता के कैरेक्टर से किया है. भाई वो जो बाल झड़क के इस गाने में एंट्री ली है, बस मुझे तो लगता था कि अगर मैं कॉलेज जाऊंगी तो फिर मेरी एंट्री भी बिल्कुल ऐसे ही होगी. वेलकम बैक जी, 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूं आपकी कशिश और आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई हूं. एंड देखिए यार, कॉलेज की एक्सपेक्टेशन जो बॉलीवुड ने सेट करी थी, आय हाय. मतलब करण जौहर सबसे पहले तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू, उसके बाद उससे पहले अगर हम देखें तो कभी खुशी कभी गम में जो है पू का जो कैरेक्टर था वो जैसे कॉलेज जाता था मुझे लगता था मैं भी वैसे ही जाऊंगी. लेकिन उसके बाद जब रियलिटी हिट करी, मेरा एक तो कॉलेज जो है वो कोविड के टाइम पे हुआ था, सो मैं 2 साल तक कॉलेज गई ही नहीं हूँ. और 1 साल जब मुझे 2 महीने कॉलेज जाने का मौका मिला तो उसमें भी मास्क लगा के जाना पड़ता था, कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता था. क्या मतलब है ऐसे कॉलेज जाने से. खैर खैर खैर, बात जो है हम कर लेते हैं ईद की. सो ईद जो है वो आने ही वाली है. एंड अभी तक मतलब मेरे जो पिछले ईद के जो मेरी ड्रेस पहनी थी वही दूसरी बार नहीं पहनी है मैंने. और मुझे स्ट्रेस शुरू हो गया है कि ये जो अब ईद आ रही है इसमें मैं क्या पहनूंगी. अगर आप भी मेरी तरह एक फैशन गर्ली है तो आपको भी ना स्ट्रेस होने लग गया होगा कि यार मेहंदी की डिजाइन तो जो है अभी तक डिसाइड ही नहीं करी. हमारे जो है अभी कश्मीरी चूड़ियों से हम बाहर नहीं आ पाए थे, अब जो है वो जेली बैंगल्स आ चुके हैं. तो आप भी आई नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होगे एंड शॉपिंग की जो है वो आपको भी ऐसे तलब सी लग रही होगी कि यार शॉपिंग कब करेंगे. तो आपकी ईद की तैयारियां किस तरीके से जो है चल रही हैं ये मुझे आप बता सकते हैं. फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं ना कल तोरबा मार्केट गई थी एंड वहाँ के फ्रूट्स वेजीज जो है वो इतने फ्रेश हैं एंड इतना अमेजिंग वाली फीलिंग आई वहाँ जाकर. एंड लोग भी ना काफ़ी इंथुजियास्टिक होकर वहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं. काफ़ी सारी हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मैंने देखे, काफ़ी सारे जो है ऑर्गेनिक चीज़ें मैंने देखी. शिया बटर से बना हुआ एक मॉइस्चराइज़र जो है वो तो मेरे आज नहाने के बाद भी मेरे हाथ से महक रहा है. सो बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं. सो अगर आपने भी तोरबा मार्केट एक्सप्लोर किया है सो मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा. एंड और भी ऐसे कोई मार्केट्स हैं जो आपने एक्सप्लोर किए हैं अभी तक मुझे नहीं पता है, सो वो भी प्लीज़ बताइए. मुझे ना ऐसे वाले मार्केट्स बहुत पसंद है. सो 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर है, इस पर आकर अपनी ईद की तैयारियाँ जो है कैसी चल रही हैं वो मुझे बता दीजिए. एंड ऐसे कुछ अगर मार्केट्स हैं जो आपको पता है सो वो मुझे बता दीजिए. और अगर अभी तक आपकी नींद नहीं खुली है सो यार उठ जाओ यार, सुबह हो गई है, मतलब दोपहर होने वाली है अब तो. बस इसीलिए आपके लिए ये गाना वेक अप सिड मूवी से, क्योंकि मेरी नींद तो देखो अभी अभी खुली है. ये गाना एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जी ओ बिंदास.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: जादू
2: मरहबा दोहा। समथिंग बिग हैज जस्ट ओपन्ड एट दोहा सिटी सेंटर। योर फेवरेट फैशन ब्रांड R&B हैज ओपन्ड अ न्यूअर बिगर एंड ग्रेटर फैशन डेस्टिनेशन एट दोहा सिटी सेंटर। सेलिब्रेट दिस ईद इन स्टाइल विद R&B एट द न्यूली ओपन स्टोर एंड शॉप द लेटेस्ट फैशन अक्रॉस वुमेन मेन एंड किड्स। एंड हियर्स योर ओपनिंग सरप्राइज। शॉप फॉर 200 रियाल एंड गेट अ फ्री स्टाइलिश टफल बैग। यस एब्सोल्युटली फ्री। बट हरी, दिस इज अ लिमिटेड ओपनिंग सेलिब्रेशन ऑफर। Head to the newly opened R&B store at Doha City Center, second floor today. R&B, love it, wear it.
3: Shackman ki power-packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
6: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

जी वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर। आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी अपना शो बिंदास मॉर्निंग लेकर। एंड कहना तो नहीं है लेकिन वक्त हो गया है अब जाने का। अब देखो अभी जाऊंगी तभी तो कल वापस आ पाऊंगी। वैसे अगर मेरी याद आए तो रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल पर आकर आप मुझे स्टॉक कर सकते हैं। वहां पर बहुत ही अमेजिंग वीडियोस जो है वो हमने डाल के रखे हैं। और बाकी नंबर तो आपको मेरा पता ही है, 3311063। इस पर व्हाट्सएप करो, अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस जो है वो मुझे लिखो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो है जब सुदेव मुझे इंट्रोड्यूस करना भूल गए थे तो मैंने कहा था कि मुझे कैसे भूल गए, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है कि हम आपको कैसे भूल सकते हैं कशिश जी, लव यू ऑल। लव यू लॉट्स की जगह उन्होंने लव यू ऑल लिखा है। पर देखिए यहाँ पे ग्रामर मायने नहीं रखती, प्यार मायने रखता है। थैंक यू सो मच। सो मैं यहाँ से चलती हूँ। अब वक्त हो गया है मुस्कान के यहाँ आने का। सो एक बड़ी सी मुस्कान के साथ मुस्कान का स्वागत कीजिए और मेरे और उसके साथ कहते रहिए जी ओ बिंदास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा और बाकी हमें दुआओं में याद रखिएगा। गाने का नाम है ख्वाब देखूं, सिंगर है अरिजीत सिंह। सुबह से गाना एंजॉय करो। मुलाकात होगी अब कल। चाचा बाय बाय, जियो बिंदास।

0: छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक
3: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
4: Commercial Bank presents CB 2026 Million Riyals Dream.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million riyals cash prizes.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 riyals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है, तो आप एलिजिबल हैं.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
6: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
7: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम

Good morning. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam, yes, of course, Life Must hai. Aur aaj hai Sunday. Aur Sunday do tarah ke logon ke liye aata hai. Ek wo jo bolte hai ki new week, fresh start, in new energy, aur bilkul energetic rehte hai. Aur dusre wo jo alarm band karke bolte hai ki yaar abhi to Friday, Saturday nikla tha. Aur Sunday ka jo psychology hai, wo bhi bahut interesting hai. Ki experts bolte hai, Sunday ko brain na suddenly responsibility mode mein shift ho jata hai. Matlab hum, we are engulfed इसीलिए ये सब संडे को होता है. अदरवाइज बाकी कंट्रीज में जहाँ पर यू नो नया वीक मंडे को स्टार्ट होता है, यही सब चीज़ें लोग मंडे को फील करते हैं. सो वीकेंड जो है वो फ्रीडम से डायरेक्ट ऑफिस, ईमेल्स, मीटिंग्स, स्कूल, ट्रैफिक, इन सब में आ जाता है, और इसीलिए मंडे जो है वो इमोशनली हैवी लग सकता है. और आपको और मुझे तो संडे हैवी लगता ही है. सो बेसिकली अगर मैं इस आर्टिकल को पढ़ूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आपके लिए नए चांसेस होते हैं, नया रूटीन, नया माइंडसेट, और लाइफ ना काफ़ी फनी है. हम जनवरी रिजोल्यूशन भूल जाते हैं, लेकिन संडे से फिर से रीस्टार्ट करने की हिम्मत वापस आ जाती है हमें. तो आज का शो भी एग्जैक्टली वैसा ही है. फ्रेश कॉन्वर्सेशन, थोड़ी नॉलेज, थोड़ा फन और फुल पॉजिटिव वाइब्स. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. मुझे बताइए कि हाउ वॉज योर वीकेंड. बाय द वे 3311 1063 इज माई नंबर. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: Radio on it. Your happiness frequency.
1: Time check. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
3: Imran bhai, Eid Mubarak.
4: Eid Mubarak.
5: Taufik chacha, Eid Mubarak.
6: Aap?
5: Chacha, main, Ibrahim.
7: Har Jumme raat aata hu,
5: tumhari biryani khane ko.
6: Arre miyan, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
8: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
9: ए, हेलो हेलो, तौफिक चचा की बिरयानी में
10: शाही जीरा सबसे खास होता है मियां।
9: क्यों चचा?
11: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
12: एक मिनट रुको। बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Bradma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Bradma Wholesale Market at Selva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Hi everyone, main hu Arman Malik.
8: Arman Malik.
9: I'm number one.
7: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
10: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: कतर ने एक बार फिर से प्रूव कर दिया है कि स्पोर्ट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं, कनेक्शन भी होता है। फोर्थ जीसीसी गेम्स कतर 2026 ऑफिशियली खत्म हो चुके हैं और ऑनेस्टली ये सिर्फ स्पोर्ट्स इवेंट नहीं लग रहा था, इट फेल्ट लाइक सेलिब्रेशन ऑफ गल्फ यूनिटी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मास्टर। उसका स्लोगन भी यही था यार, वन गल्फ वन हार्ट, और जेन्युइनली एटमॉस्फेयर भी वैसा ही था। 12 दिन तक एथलीट्स, फैंस, वॉलंटियर्स और फैमिली सब एक साथ, सब एक एनर्जी में कनेक्टेड थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कतर की होस्टिंग को फिर से ग्लोबली प्रेज किया गया, और ये सरप्राइज भी नहीं है, मतलब सब जानते हैं कि कतर कितना अच्छा होस्ट है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल देख लो आप, स्टेडियम्स, ट्रांसपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटैलिटी, सब वर्ल्ड क्लास होता है। और स्पोर्ट्स का रियल ब्यूटी क्या होता है, कंट्रीज कंपीट करती हैं लेकिन इमोशंस कनेक्ट हो जाते हैं, यंग एथलीट एक दूसरे से फ्रेंडशिप बिल्ड करते हैं, कल्चर मिक्स होते हैं, और गल्फ रीजन के जो यूथ स्पोर्ट्स कल्चर हैं काफ़ी ज़्यादा यू नो ग्रो कर रहा है, हेल्थ, डिसिप्लिन, टूरिज्म, इकोनॉमी, यूनिट, ये सब कुछ एक साथ आ जाता है जब कोई अच्छा स्पोर्ट्स इवेंट यू नो किसी भी कंट्री में होता है। तो वी विल टॉक अबाउट दैट और बात करेंगे कतर के टॉप यू नो मेडल्स की। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

134 medals sirf numbers nahi hote, years of sacrifices hota hai. You are listening Radio Olive 106.3 FM. Main hoon Muskan aur show ka naam Life Must hai. Qatar ne GCC Games 2026 mein history create kar di hai. Total agar main games ki baat karun, toh it is like 48 gold, 50 silver, 36 bronze, overall 134 medals. Best performance ever. Aur medal ceremony hum 5 minute dekhte hain, lekin uske peeche ka jo saalon ka, you know, sacrifices hote hain, morning training, injuries, pressure, discipline, इतनी सारी चीज़ें होती हैं इन मेडल्स के पीछे. सो एथलीट्स के साथ वॉलंटियर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत ह्यूज होता है. कोई ट्रांसपोर्ट मैनेज कर रहा होता है, कोई हॉस्पिटैलिटी, कोई लॉजिस्टिक, मतलब बिग स्पोर्ट्स जो ये इवेंट हैं इनमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, टीम वर्क की ज़रूरत होती है, और सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सारे लोग इसके पीछे होते हैं. सो आई विल से कि स्टडीज़ भी ये शो करती है कि स्पोर्ट्स यूथ कॉन्फिडेंस और मेंटल डिसिप्लिन दोनों इम्प्रूव करता है. और जब होम क्राउड चीयर करता है ना, जैसे कि कतर में यहाँ पर कतर के जो बच्चे खेल रहे थे उनके लिए एनर्जी का लेवल डिफरेंट हो जाता है. इसीलिए 134 मेडल्स आए हैं. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. आप मुझे बताओ कि जब आप किसी स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हो तो आपको क्या लगता है कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने कॉलेज टाइम से या स्कूल टाइम से याद आती है, कौन सा वो स्पोर्ट है. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: This Eve, your shopping just got twice as exciting at Lulu Hypermarket because Half Payback is back.
3: Pick your festive fashion favorites, sari, churidar, footwear, ladies' bag, baby accessories and more. And when you spend 200 riyal, you get a free Lulu shopping voucher worth 100 riyal instantly.
2: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket, more style, more smiles, more savings this Eve.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: है कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: एवरी डे आई टॉक अबाउट बुक्स और उसमें से आज एक ऐसी ही किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है अ फाइन बैलेंस. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है.
1: ओके बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: सो इंडियन ओरिजिन राइटर हैं जिनकी एक किताब है इंटरनेशनली अक्लेम्ड नॉवल जिसे कहा जाता है. सो वी विल टॉक अबाउट दिस बुक जिसका नाम है अ फाइन बैलेंस. ये उन बुक्स में से है जो स्लोली आपको इमोशनली अटैच कर देती है. स्टोरी इंडिया के यू नो सोशल बैकड्रॉप में सेट है जहाँ पर डिफरेंट लोगों की जो लाइफ है वो फॉलो करती है सर्वाइवल के लिए, डिग्निटी के लिए, होप के लिए. और बुक का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो है ह्यूमैनिटी. इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में भी लोग फ्रेंडशिप और काइंडनेस फाइंड कर ही लेते हैं. सो ये बुक ग्लोबली लिटरली मास्टरपीस मानी जाती है क्योंकि इट फील्स डीपली ह्यूमन. फनी भी है, पेनफुल भी है, वार्म भी है और एडल्टहुड में ये बुक और भी ज़्यादा आपको समझ में आती है. लाइफ कभी परफेक्ट बैलेंस नहीं होती. ये फाइन बैलेंस जो किताब का नाम है अ फाइन बैलेंस, ये आपको बैलेंस करना ही सिखाती है. सो यू कैन रीड दिस बुक अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार लाइफ में सब कुछ बहुत परफेक्ट हो सकता है. हो तो सकता है पर उसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत सारा होता है. सो ये किताब बस उसी स्ट्रगल को बताती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. वी विल टॉक अबाउट यू नो मैचेस. आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

आज दो मैचेस होने वाले हैं. पहला अभी दिन में स्टार्ट होने को है, विच इज मुंबई वर्सेस राजस्थान. दूसरा शाम को मैच होगा कोलकाता वर्सेस दिल्ली का. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो यस्टरडे इट वाज पंजाब वर्सेस लखनऊ, जिसमें पंजाब ने 18 ओवर में मैच को जीत लिया. टारगेट था 196 रन का और पंजाब ने बनाए 200 रन 3 विकेट के नुकसान पे, वो भी सिर्फ 18 बॉल में. सो आज जो मुंबई वर्सेस राजस्थान होने वाला है, या तो उसमें वैभव आज फिर से शतक लगाएंगे या राजस्थान टॉप फोर में अपनी पोजीशन बचा पाएगी या मुंबई से फिर से हार जाएगी. वी विल टॉक अबाउट दैट और बात करेंगे कि भाई आपकी फेवरेट टीम कौन सी है. 3311063 इज माई नंबर और आप मुझे बताओ कि भाई क्या होने वाला है आज. मतलब 2026 के लीग स्टेज में सिर्फ दो मैचेस बाकी हैं, लेकिन अभी तक प्लेऑफ की चार टीमें जो हैं वो अभी फाइनल नहीं हुई हैं. सो यस्टरडे इट वाज पंजाब वर्सेस लखनऊ, जिसमें पंजाब ने लखनऊ को हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी थी. टीम 14 मैचेस में 15 पॉइंट्स के साथ फोर्थ नंबर पर पहुंच गई है. पंजाब की इस जीत से दिल्ली प्लेऑफ से बाहर होने वाली चौथी टीम बन गई. उससे पहले लखनऊ, चेन्नई और मुंबई बाहर हो चुके हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दैट और बात करेंगे कि भाई अब आज दो मैचेस होने वाले हैं, उन दोनों में क्या यू नो कमाल देखने वाले मिलने वाला है. सो आप कहीं मत जाइए, सुन द रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: तो आज क्या होने वाला है आपको पता है, सीजन का आखिरी डबल हेडर, पहला मैच मुंबई और राजस्थान के बीच में, फिर दूसरा मैच अगर मैं बात करूं तो शाम को होने वाला है। पर राजस्थान 14 पॉइंट्स के साथ पांचवें नंबर पर है और उसके साथ प्लेऑफ में पहुंचने का आखिरी मौका उनके पास है। सो मुंबई 13 मैचेस में 4 जीती है और 8 पॉइंट के साथ इस टाइम पर है। टीम 9th नंबर पर है और पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। सो मुंबई को हराने पर राजस्थान के 16 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये पंजाब और कोलकाता से ज़्यादा होंगे और ऐसे में टीम सीधे प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। अगर राजस्थान हार जाती है तो टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। मतलब आज के जो मैचेस हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे करो या हारो वाली चीज़ होने वाली है। सो बेसिकली आज क्या होगा ये तो भाई टाइम ही पता चलेगा, थोड़ी देर में ही एक मैच स्टार्ट होने वाला है, वी विल टॉक अबाउट दैट। और साथ ही साथ आप मुझे अपनी फेवरेट टीम के बारे में बताओ, आपको क्या लगता है कि कौन 4 टीम है जो जाने वाली है उसमें फाइनल में और मैच खेलने वाली है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: दिस ईव योर शॉपिंग जस्ट गॉट ट्वाइस एज एक्साइटिंग एट लुलू हाइपरमार्केट बिकॉज हाफ पे बैक इज बैक.
3: पिक योर फेस्टिव फैशन फेवरेट्स, साड़ी, चूड़ीदार, फुटवेयर, लेडीज बैग, बेबी एक्सेसरीज एंड मोर. एंड व्हेन यू स्पेंड 200 रियाल यू गेट अ फ्री लुलू शॉपिंग वाउचर वर्थ 100 रियाल instantly.
2: That's right. Shop today, save instantly and come back for more celebrations. Lulu Hypermarket. More style, more smiles, more savings this Eve.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life

सो जितनी ज्यादा गर्मी होती है ना उसमें सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि ब्रेन भी हैंग हो जाता है. कभी आपने नोटिस किया है कि एक्सट्रीम जब हीट आती है तब आप सडनली लो फील करने लग जाते हो. सिंपल काम भी एग्जॉस्टिंग लगता है और इसके पीछे ना साइंस तो है ही जो पूरा सपोर्ट करता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. मतलब वीकेंड जा चुका है. फ्राइडे एंड सैटरडे को एवरीबॉडी वॉज लुकिंग सो गुड. हर कोई मतलब ऑफिस में भी तैयार होकर आ रहा था सो दैट यू नो हाफ डे करने के बाद सैटरडे को वो अपने बाकी के प्लान्स को कंटिन्यू कर सके. फ्राइडे तो था ही आपके पास. सो सिंपल सा काम अब संडे से थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाएगा क्योंकि साइंस भी कहता है कि हाई टेम्परेचर जो है वो फोकस रिड्यूस कर देता है, मूड को इफेक्ट करता है और इरिटेबिलिटी इंक्रीज कर देता है. अब एक्चुअली गल्फ में ऑफिसेज में इतना अच्छे से एसी मेंटेन किया जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर कितनी गर्मी है. लेकिन अगर मैं बात करूं 5 मिनट भी आप लंच टाइम पे बाहर जाते हो या आपको लगता है कि यार शाम को 5 मिनट के लिए ब्रेक लेके एक चाय पीकर आते हैं तो बस आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपने गलती की है. सो बॉडी कंटिन्यूअसली कूलिंग मोड में रहती है और इसीलिए एनर्जी ड्रेन होती है और डिहाइड्रेशन का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. इवन स्लाइटली डिहाइड्रेशन जो है वो हेडेक, टायर्डनेस और ब्रेन फॉग जैसी चीज़ें कर सकता है. तो इसका कॉज क्या है? एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स, हाइड्रेशन, लाइट फूड, प्रॉपर स्लीप, ये सब चीज़ें हैं. आजकल ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बड़ा यू नो चलन चला हुआ है. इवन ऑन इंस्टाग्राम मैं देखती हूँ कि हर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहा होता है कि यार मैं तो पानी में भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेती हूँ. अब ये कैसे लेते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है समर में, स्पेशली कतर के समर में सर्वाइव करना. सो आई विल से कि अगर आपने ये सर्वाइव कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो. यू टेल मी कि आपको कितने साल हो चुके हैं कतर में और कतर की के साथ. बाय द वे दिस इज माय सेकंड सीजन. जब मैं पहली बार कतर में आई थी पिछले साल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी गर्मी है यहाँ पे, कैसे ये जो यू नो गर्मियों का टाइम है इस टाइम पे यू नो ऑफिस का काम बाकी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं. पर धीरे धीरे सब समझ में आ गया कि सारी चीज़ें अपने आप मैनेज हो जाती है. बाय द वे आप मुझे बताओ कितने साल हो चुके आपको यहाँ पर. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

So, कभी कभी ऐसा लगता है कि दुनिया ना फिर से ये बड़े बड़े फोन स्क्रीन से थक चुकी है. इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि लोग ना वापस से कॉम्पैक्ट फोन प्रेफर करने लगे हैं और रीजन भी बहुत प्रैक्टिकल है. हैवी लगता है, पॉकेट इशू हो जाता है और वन हैंड यूज इम्पॉसिबल हो जाता है. सो बड़े फोन्स के साथ ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो डबल स्क्रीन है या फोल्डेबल फोन है. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च जो है वो आती रहती है, तो मुझे लगता है कि भाई मैं हर दिन आपसे कुछ नई बात करूँ. प्लस डिजिटल फटीग भी बहुत रियल है आज के टाइम पे. सो लोग कंटिन्यूसली स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहते हैं. इवन मैंने तो बहुत टाइम रिड्यूस किया है पिछले कुछ एक हफ्ते में. सो बेसिकली अगर डिवाइस छोटा होता है तो ये साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा एडिक्टिव फील होता है. नॉस्टैल्जिया फैक्टर तो है ही इसमें. तो अगर आपको याद होगा कि ओल्ड कॉम्पैक्ट फोन्स जो थे इजी टू कैरी, सिंपल, ड्यूरेबल, अब टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इतनी अगेन सिंप्लिसिटी की तरफ जा रही है कि लोग सिर्फ मोर फीचर्स नहीं बल्कि बेटर लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. एंड आई विल से कि अगर आप भी इन बड़े बड़े फोन से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार, मतलब सिंपल फोन जो पॉकेट में आ जाए, जो easy to carry हो, बिल्कुल भी heavy ना हो, तो आप कौन सा फोन यू नो प्रेफर करोगे? 3311106 माय नंबर. बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि फोन शुड बी वेरी सिंपल, जो यू नो आपका बस काम चला दे, सो दैट आपको बहुत ज्यादा आदत ना लगे, ऐसा ना लगे कि इस फोन में इतने सारे फीचर्स हैं और मैं तो इसे यूज ही नहीं कर पा रही या यूज ही नहीं कर पा रहा. तो इसीलिए सिंपल फोन लेना ही बेटर होता है. बाय द वे विच फोन यू आर यूजिंग? 3311106 माय नंबर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास. Radio

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm number one. Radio Olive.
1: I'm number one. Time check. Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार।

0: दिन कट तक सब कुछ अनबीटेबल वैल्यू में। तो इस फेस्टिव सीजन लुक में भी टॉप अप करो। स्पेक्टेकुलर फेस्टिवल ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए आपके नजदीकी लुलु स्टोर्स में।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: सो रात को जब आप पूरी तरह से थक चुके होते हो लेकिन ब्रेन जो है वो फुल एक्टिव मोड में रहता है क्योंकि आज नया दिन स्टार्ट हुआ है, हफ्ते का नया पहला दिन है, आपके पास बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे टारगेट्स हैं. सो ओवरथिंकिंग जो है वो मॉडर्न जनरेशन का अनऑफिशियल हॉबी बन चुका है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. सो सडनली लाइट्स ऑफ होती हैं और ब्रेन बोलता है फ्यूचर, पास्ट, एम्बैरेसिंग मोमेंट और मेमोरीज फ्रॉम दिस ईयर और दैट ईयर. इसीलिए कैमोमिल टी जो है वो ग्लोबली कामिंग ड्रिंक मानी जाती है. अब कैमोमिल एक हर्ब है और स्टडी सजेस्ट करती हैं कि इसमें माइल्ड रिलैक्सिंग कंपाउंड्स होते हैं. कुछ दिन पहले मैं माचा के बारे में काफ़ी पढ़ रही थी, मतलब किसी को बहुत पसंद आ रहा था, किसी को टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसके ना फ़ायदे नुकसान बहुत सारे थे. तो मतलब क्योंकि वो बहुत ट्रेंडिंग था इंस्टाग्राम पर, हर कोई उसके बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको भी बताया था. अभी जो है कैमोमिल टी के बारे में बहुत बात हो रही है. डिम लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक और बस एक ये वाली चाय ऐड करते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके ब्रेन में. ब्रेन को स्लीप के लिए सिग्नल चाहिए होता है. रूटीन टेल्स द बॉडी अब स्लो होना है. और ऑनेस्टली स्लीप लग्जरी बन गई है अभी आजकल के दिन में. हम फिजिकली बेड पर होते हैं पर मेंटली हम ना बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि भाई पास्ट में क्या हो गया था, अब वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा, कल कौन सी मीटिंग है और कल इस मीटिंग में क्या होगा, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं. पर आपको चाहिए थोड़ा सा आराम. सो फोन थोड़ा सा साइड पर रखिए, ब्रेन को भी रेस्ट दीजिए. और इफ यू वॉन्ट टू ट्राई देन यू कैन ट्राई दिस टी जिसका नाम है कैमोमिल टी. आपको बहुत ही आराम से किसी भी हाइपर मार्केट में मिल जाएगी. एंड आई एम ऑलरेडी ट्राइंग फॉर 2-3 डेज, तो इसके रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ एक दो दिन बाद. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

अच्छा, बॉलीवुड ने तो हमें ये सिखा दिया है कि प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको अपने 20s में अगर कोई ये बता रहा है कि नहीं यार प्यार सब कुछ नहीं है, तो उसकी बात एकदम सही है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सो मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी मूवीज हैं जो आपको सिखाती हैं और एक्चुअली आपको क्या सीखना चाहिए। सो 20s का बिगेस्ट कन्फ्यूजन यही होता है कि हम इमोशनल लाइफ पर बहुत फोकस करते हैं, लेकिन करियर, सेविंग्स, स्किल, स्टेबिलिटी, ये आप 20s में ही सीख सकते हो और वहीं से फिर आगे बढ़ सकते हो। ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, और जितना जल्दी आप फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हो, आपको आ जाती है, फ्यूचर आपका उतना ईजी हो जाता है। सो ऐसा कहा जाता है स्टडीज़ में कि 20s जो है वो आइडेंटिटी बिल्डिंग ईयर्स होते हैं, यानी आप कौन हो, क्या बनना चाहते हो, कौन सी लाइफ बिल्ड करना चाहते हो, ये सब इसी फेज में शेप होता है। आज के टाइम पे तो लोग 40s में भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 30s में भी करते हैं, बट देन अगर आप अपने 20s में सारी चीज़ें फाइंड आउट कर लेते हो और एक नया अपना रास्ता बना लेते हो, तो आपके लिए लाइफ बहुत आसान हो जाती है। सो सोशल मीडिया और बॉलीवुड ने प्यार को इतना ग्लैमराइज कर रखा है कि कभी कभी लोग सेल्फ ग्रोथ जो है वो इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि हेल्दी लव ब्यूटीफुल है, लेकिन कंप्लीट लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं होती। आपका कॉन्फिडेंस, करियर, पीस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, सब कुछ मैटर करता है। इसीलिए फाइनेंशियली स्टेबल लोग इमोशनली भी ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। अगर आप अपने 20 years ओल्ड सेल्फ को एक एडवाइस दे सकते हो तो बताओ मुझे क्या होगी वो एडवाइस। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां पर मुझे आपसे कहना होता है कि आज का लास्ट थॉट क्या है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। लाइफ का अगर मैं लास्ट थॉट की बात करूं तो हमें हर दिन ना हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं, बट अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है तो मेरे लिए आज का लास्ट थॉट ये बन रहा है कि कभी कभी आंसर्स ना लेट मिलते हैं लाइफ में, कभी कॉन्फिडेंस लेट आता है, कभी पीस भी लेट मिलता है, और दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि ग्रोइंग अप का मतलब सब कुछ इंस्टेंटली समझना नहीं होता, स्लोली फील करना होता है। सो इस वीक, क्योंकि आज नया वीक स्टार्ट हुआ है, संडे है, सो खुद पर थोड़ा सा प्रेशर कम रखिए, कंपैरिजंस थोड़े से कम करिए और ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा ज्यादा रखिए, क्योंकि ऑनेस्टली लाइफ परफेक्ट नहीं होती लेकिन मीनिंगफुल जरूर हो सकती है अगर आप चाहो तो। सो आई विल से

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक.
2: ईद मुबारक.
3: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
4: आप?
3: चाचा, मैं इब्राहिम. हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को.
4: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
5: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
6: ए, हेलो हेलो, तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां. क्यों चाचा?
7: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
8: एक मिनट रुको, बात शायद आप भूल गए बेटा. ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Olive Music Marathon. 1 ghanta non-stop back to back.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: Zenzo ki awaaz mein Rancha mein bada beautiful track. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aage aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon meri jaan. Kya haal chaal hai? Naya hafta shuru ho chuka hai aur saath mein khushiyon ki lehar lekar aaya hai kyunki Eid aane wali hai. और ऑलरेडी यू नो ऐसे सेलिब्रेशन मोड में हैं और फेस्टिव मोड में आ चुके हैं हम.
1: अपना दिल तो आवारा ना जाने किस पे आएगा.
0: सरम की आवाज में ये ब्यूटीफुल रेंडिशन ऑफ है अपना दिल तो आवारा और साथ में ये खूबसूरत गाना हुआ डाली ब्रदर्स की आवाज में. और मुंबई और राजस्थान का मैच चल रहा है इस वक्त, तो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं जरा बताइएगा मुझे. बताओ पढ़ा है क्या? पॉसिबल है ये? नहीं, बिजी बहुत हैं हम, फालतू का स्ट्रेस लेने लगे हुए. क्या यार, चिल करो थोड़ा, ठीक है? बढ़िया गाना भेज रही हूँ, इंजॉय करो इसको और अपने हाल चाल बताओ 3311 1063 पर. और सुन रहे हो रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास मेरी जान.

आतिफ असलम की आवाज में दरअसल फ्रॉम द मूवी राबता ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और एक बहुत सुंदर बात पढ़ी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो आपसे शेयर करना तो बनता है मेरी जान. इट सेज कि जो आपके भाग्य में लिखा है ना वो तो आपको मिलके ही रहेगा, और जो नहीं लिखा है ना वो साम दाम दंड भेद सब कुछ ट्राई कर लो फिर भी आपके हाथ नहीं आएगा. और हम फिजूल चीज़ों के पीछे ग्रिप करते रहते हैं यार. अगर हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग एंड दैट इज मेंट टू बी फॉर अस, तो वो इवेंचुअली रिजल्ट आ जाएगा. मे बी देर लग सकती है पर आएगा जरूर मेरी जान. और जो चीज़ें नहीं है हाथ में उसके पीछे आप कितना भी रो लो वो हाथ में आएगी ही नहीं, क्योंकि इट इज नॉट मेंट टू बी. और ये चीज समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है. सो द डे यू लीव इट ऑन फेट ना कि ठीक है होना होगा हो जाएगा, उस दिन आपको वो क्लैरिटी मिल जाती है वेदर इट इज मेंट फॉर यू और नॉट. सो थोड़ा चिल करो, थोड़ा रिलैक्स करो, कूल सम ऑफ द आवर्स ऑन आवर सुंदर रेडियो ऑलिव जियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: तनिषा
1: दिलजीत दोसांझ की आवाज में लवर ओली ऑन रेडियो 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ ओली वी टॉक चल रहा है यहाँ पर. और देखो मोहब्बत तो हमें भी आपसे है. अब ईद आए और हम आपके लिए कुछ ना करे ऐसा कैसे हो सकता है. सो ईद मजलिस के लिए तैयार हो जाइए, बहुत जल्द होने वाला है. हम साथ मिल के लंच करने वाले हैं. अब उस लंच में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, ईद मजलिस के सेलिब्रेशन में आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं, तो फटाफट से रजिस्टर कीजिए अपनी फैमिली के साथ. यू कैन कम देयर एंड वी विल हैव लॉट्स ऑफ फन. आपने बस रजिस्टर करने के लिए हमें 3311 1063 पर मैसेज करना है EM और अपना नाम लिखकर मुझे फटाफट से भेज दो. क्या EM ईद मजलिस का EM और अपना नाम लिखकर मुझे भेज दीजिए और मुझे ये भी बताइएगा साथ में कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. 3311 1063 इज द नंबर, फटाफट से भेज दो. वेट कर रही हूँ आपके साथ ईद सेलिब्रेशंस का. अर्सन रेडियो जियो बिंदास.

0: 2026 only. Hurry!
1: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: Denisha. Denisha. Denisha. Denisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Sridhi Chauhan ki awaaz mein Chameli movie se Sajna Ve Sajna. और ऑलिवर रिचार्ड चल रहा है यहाँ पे और साथ में चल रहा है मैच मुंबई और राजस्थान के बीच में. सो मुंबई की बैटिंग शुरू हो चुकी है, उन्हें टारगेट मिला है 206 का. फिलहाल मुंबई के हो चुके, ये एक सिक्स लगाए अभी के अभी, मतलब सो 12 रन्स हो चुके हैं मुंबई के और एक विकेट भी हो चुका है जी. देखते हैं क्या होता है. आप कौन सी टीम को इस बार सपोर्ट कर रहे हैं इस मैच में बताएं मुझे 3311063 पर. और ये नंबर अगर आपके पास ऑलरेडी सेव्ड है या फिर आपने डायल करी लिया मैसेज करने के लिए मुझे, तो एक और काम करना है. सो वी आर गोना बी सेलिब्रेटिंग ईद टुगेदर, आप और हम, आपकी फैमिली और हमारी ऑलिव फैमिली, वी विल बी सेलिब्रेटिंग ईद टुगेदर दिस ट्यूजडे. वी गोना हैव लंच टुगेदर. तो अगर आप उस जश्न का हिस्सा बनना चाहते हैं, ईद मजलिस सीजन 5 का पार्ट बनना चाहते हैं, तो फटाफट से खुद को रजिस्टर कर दो. और आपने बस ये करना है, ई एम लिखना है ईद मजलिस का, ई एम स्पेस आपका नाम, और भेज देना है 3311063 पर. हाँ जी, इतना आसान काम है यार. और बढ़िया गाना भेज रही हूँ अभी रबी शरीर की आवाज में, दिल्ली हाइट से तेरे बिन. सुंदर रेडियो ऑल है जी, बिंदास.

0: Denisha. Denisha. Denisha. Denisha. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Denisha, aapke saath Olive Recharge chal raha hai yahan par.
1: Ye hai, chalti phirti dictionary.
0: सो डिक्शनरी से आज जो मैं एक वर्ड लेकर आई हूँ वो काफ़ी लोग हो सकता है कि ऑलरेडी महसूस कर रहे हों या फिर वो महसूस करके उससे आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर उसको यू नो बर्दाश्त करने का या फिर उसको ठीक करने का, ठीक आई वॉन्ट से मतलब यू नो गेटिंग बैक ऑन ट्रैक वाला तरीका सीख गए होंगे. सो द वर्ड इज एरिमिशन, ई आर ई एम आई टी आई ओ एन, एरिमिशन. एंड इतना खास इसलिए है क्योंकि Eventually we all come up to this stage in life कभी ना कभी, you know, या तो जिंदगी बहुत monotonous लगने लग जाती है या stagnant हो जाता है, you know, career या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें अब मन लग ही नहीं रहा है, कुछ नया करना है, you know, that's the time when we gradually start fading from the life of others, not out of malice, कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, किसी से problem नहीं है, बस you know अपना solitude चाहिए और अपने आप को री एनर्जाइज, रिज्यूविनेट और रिन्यू करने के लिए वी जस्ट ग्रेजुअली फेड और दूर हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए अकेले रहना चाहते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं. दैट इज एरिमिशन. यस. एंड

0: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
1: Joyalukkas, world's favorite jeweler.
2: तौफिक चाचा, ईद मुबारक।
3: आप
2: चाचा, मैं इब्राहिम। हर जुम्मे रात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को।
3: अरे मियां, तौफिक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी।
4: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं।
5: हेलो हेलो, तौफिक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां। क्यों चचा?
6: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ।
7: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.

सोनू के टीटू की स्वीटी से बम डिगी डिगी भाई, ये जो मूवी का नाम है इट वॉज सच अ टंग ट्विस्टर. उस टाइम पर लोगों को इतना मुश्किल हो गया था कि इस पे ही वीडियो बनाना शुरू कर दी कि भाई ये कैसा टंग ट्विस्टर टाइप का नाम रखा है, और प्रमोशन मिल गया जी. स्मार्टनेस देख रहे हो आप. तनीषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर. ऑल एव रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर. और एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया है मुझे. सो सबसे पहले तो मैं एन का मैसेज पढ़ूंगी. मैंने कुछ देर पहले बात करी थी एडमिशन की, एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू यू नो सिट विथ आवर सेल्स. खुद के साथ बैठना, खुद की कंपनी के यूज टू हो जाना, क्योंकि हम घबराते अपने साथ बैठने से. वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में बात की थी. एन का उस पर मैसेज आया है, वेल सेट तनीषा, नो वन बट वी आर सेल्स will know about the in and out of ourselves and actually यही बात है. और हमसे बेहतर किसी और को जानने की जरूरत है भी नहीं. ठीक है, मैं मुझको जानती हूँ अच्छे से, आप आपको जानते हो. हम जो एक दूसरे को जानते हैं ना, वो जो मैं दिखा रही हूँ आपको, आप वही जान पा रहे हो, और जो आप मुझे दिखा रहे हो मैं वही जान पाऊंगी. वेल, ये सब बातें तो होती रहेंगी. अभी एक और इम्पॉर्टेंट बात करनी है. सो मुझे खिजर जी का मैसेज आया है कि नई नई शादी हुई है उनकी. सो सबसे पहले तो उसके लिए बधाइयाँ जी. एंड उनकी जो वाइफ है अकीला बेगम, वो आ चुकी हैं कतर में. जी हाँ, तो वेलकम है जी आपका कतर में. एंड कतर, पूरे कतर की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, यू नो, फॉर योर मैरिज. एंड वी ऑल विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ. और ये जो नया पड़ाव आपकी ज़िंदगी में आया है, ये एकदम बहुत सारी खुशियां, प्रॉस्पेरिटी, सब अच्छा अच्छा लेकर आएगा लाइफ में. यही हम दुआ करते हैं आपके लिए. और कतर तो देखो प्यारा है, वो सबको प्यार दे देता है. आपको भी ज़रूर मिलेगा अकीला जी. सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जी बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार. लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ.
3: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर, स्मार्ट कैजुअल, स्टाइलिश डेनिम्स, स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच डिटेलिंग का फिनेस.
2: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
3: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और ये स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
4: इब्राहिम भाई, ईद मुबारक.
5: ईद मुबारक.
4: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
5: आप
4: चाचा? मैं इब्राहिम. हर जुमेरात आता तुम्हारी बिरयानी खाने को.
5: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
6: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
7: हेलो हेलो, तौफीक चचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां.
5: क्यों चचा?
8: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
9: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
3: Paratma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma, Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: Hi guys, this is Jonita Gandhi.
6: Radio Olive.
5: You are listening to me on Radio Olive, Geo Binda.
6: Radio Olive, I'm a number one.
7: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
8: Olive laga aur ho ja recharge.
9: Olive recharge. Tanisha ke saath.
10: Olive recharge. RJ Tanisha ke saath. Radio Olive 106.3 FM par. Geo Binda.
11: With Homes Are Us, we complete your home. Shine smarter this season with Malabar Gold and Diamonds. Exchange your old gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs. Sirf making charges pay karke.
12: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: रीमेक आ रहा है इसका, रीमेक आ रहा है, सीक्वल आ रहा है, क्या आ रहा है ये नहीं पता, पर हाँ यही फ्रेंचाइजी आने वाली है और फोर इडियट्स के साथ। चौथा इडियट जो ऐड हुआ है वो है विकी कौशल, तो बढ़िया ही लग रहा है मुझे, कुछ बुरा तो इसमें नहीं लग रहा। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM, तनीषा आपके साथ ऑलिव रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। एंड कुछ दिन पहले आई वेंट टू वॉच दृश्यम 3 या इन मलयालम सबटाइटल्स आते हैं नीचे, तो समझ गई मैं। एंड देन जो पुरानी वाली दृश्यम्स हैं वो मैंने हिंदी में तो देखी रखी है, सो आई नो द लाइक यू नो बेस स्टोरी, बट आई फेल्ट कि अब खींच दिया है वो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, जैसे खींच नहीं दिए थे वो शोज बहुत, यही हाल फील हो रहा है। बट स्टिल यू नो फैंस आर फैंस, दे विल एनी वे वॉच इट एंड दैट्स व्हाट वी डिड। वेल एक बात बतानी थी आपको, याद दिलाना था एक्चुअली कि ईद मजलिस सीजन 5 होने वाला है, जी हाँ बहुत जल्द। एंड ट्यूसडे को वी आर हैविंग लंच टुगेदर फॉर ईद सेलिब्रेशन, फॉर ईद मजलिस सीजन 5, तो अगर आप उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने आप को रजिस्टर कीजिए फटाफट से 3311063 पर, EM लिखिए, ईद मजलिस का EM और अपना नाम, और भेज दीजिए और रजिस्टर कर लो खुद को। Those who get selected, we will give you a call and let you know कहाँ आना है, कब आना है। इतना बता दिया कि इस ट्यूजडे को लंच कर रहे हैं हम साथ में, ठीक है। सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha आपके साथ. All of recharge चल रहा है यहाँ पर, और राजस्थान और मुंबई का जो मैच चल रहा है भाई, मुश्किल हो रही थोड़ी मुंबई के लिए. सो राइट नाउ द स्कोर इज 125 विकेट्स के साथ 12.2 ओवर्स हुए हैं, एंड मुंबई नीड्स टू स्कोर 86 रन्स इन 46 बॉल्स. जी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नहीं भी हो सकता है की तरफ मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हो रही हूँ, बट यू टेल मी विच टीम यू आर सपोर्टिंग. और अभी कुछ ही देर में 5 बजे शुरू होने वाला है दिल्ली और कोलकाता के बीच में मैच. देखते हैं वहां पे भी कौन बाजी मार जाता है, एंड ऑल्सो आप बाजी मार लो फिलहाल, तो फटाफट से पहुंचो हमारे इंस्टाग्राम पे. जी, radio.qu इज द हैंडल. इफ यू हैवंट फॉलोड येट, फटाफट से फॉलो कीजिए, एंड वहाँ पे जो भी पोस्ट वगैरह हैं चेकआउट कीजिए, क्योंकि कॉन्टेस्ट चल रहे हैं यार. यू कैन विन सम एक्साइटिंग गिफ्ट्स ओवर देयर, सो पार्टिसिपेट कीजिए उन कॉन्टेस्ट में. एंड जो भी वीडियोस हम पोस्ट कर रहे होते हैं और पिक्चर्स और यू नो एनीथिंग वी आर पोस्टिंग, इट इज़ ओनली फॉर यू. इंटरेक्ट कीजिए उसके साथ, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. आप हमें वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं अगर व्हाट्सएप नहीं कर पा रहे हैं तो बिंदास से खुल के यू नो अपना प्यार शो कीजिए हमें वहाँ, और सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते रहिए, सो दैट हमें पता चले कि आप तक चीज़ें पहुँच रही हैं. यस, और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

See if those girls don't care, फर्क नहीं पड़ता, मैं केयर करती हूँ आपकी, समझ रहे हो आप बात को. क्या कमाल का गाना था यार, मजा आ गया सुन के. After so long I've heard this track. Thank you to Simran who put this song in my playlist. शुक्रिया दीदी. You're listening to Radio Alamara 6.3 Tanisha आपके साथ. All the recharge चल रहा है यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का. मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे. लेकिन एक बार फिर से बता दूँ, अगर इस ट्यूसडे को हमारे साथ लंच करना चाहते हैं, ईद मजलिस सीजन 5 का पार्ट बनना चाहते हैं, तो डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर योरसेल्फ. आपने लिखना है EM स्पेस आपका नाम और 3311063 पर भेज देना है. एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड वी विल गिव यू अ कॉल और फिर हम करेंगे साथ में लंच, बातें और बहुत सारे मजे जी. एंड ऑल्सो हमारे सोशल मीडिया पर भी कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, सो जाइए चेकआउट कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए. यू नेवर नो, यू माइट विन समथिंग रियली कूल. या और अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जी बिंदास मेरी जान.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

कितना खूबसूरत गाना है यार, अच्छी वाइब सेट हो गई है शो की शुरू होती। मैं ये भी सोनियो की तरह जल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तोड़े नाल। जी चांदनी भी आ गई, दीवाना भी आ गया, आप भी आ गए, हम भी आ गए, और बताओ क्या हाल चाल है, सब बढ़िया चल रहा है। देखो हफ्ते की पहले दिन की शुरुआत हो गई है, लेकिन ये वाला जो है ना वो हफ्ता, वो ऐसे आपको ऐसा वीकडे जैसा फील नहीं होने वाला है, बस आज और कल की बात है, फिर तो उसके बाद आप लोगों की छुट्टियां जो है वो ईद की शुरू हो जाएंगी और फिर मजे ही मजे। एक नंबर गाने चलेंगे, चार घंटे अपने होने वाले हैं, तो पूरा टेंशन जो है मुझे देने के लिए तैयार हो जाओ। एंड कैसा रहा आपका आज का दिन, 3311063 पर फटाफट से आप लोगों के मैसेजेस भेज दो। एंड मैच की अपडेट्स भी आपको देने वाली हूँ, एंड ईद मजलिस की अपडेट भी आपको देनी है यार।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके. और अब एक और ग्रेट न्यूज, विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
5: हाय, दिस इज बिपाशा बासु.
6: हाय, आई एम राजकुमार राव.
7: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
8: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
4: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 एफएम.
9: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
10: आरजे सिमरन के साथ.
11: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Supported by Homes R Us, we complete your home.

आदित्य नारायण सर की आवाज, जानम समझा कर उसे, बहुत ही अमेजिंग गाना आप सुन रहे हैं। 5:17 7 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे, ऑसम टाइम, ऑसम आप, मैम भी ऑसम, शो भी ऑसम, रेडियो भी ऑसम। जी सिमरन कौर है यार, 2-3 दिन से ना मैं स्वीट जो है ना दबा के खा रही हूँ और पिंपल निकलने जो है वो चालू हो गए हैं, लेकिन फेस्टिव सीजन है यार, ईद ऑलमोस्ट आ चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी है, ऐसे टाइम पे खाओ यार, कोई बात नहीं है, रिग्रेट जो है वो नहीं करना है, वो बाद में कर लेंगे, उसके बाद तो करना ही करना है। अब ईद की बात कर रहे हैं, हर बार की तरह इस बार भी ईद मजलिस जो है वो रेडियो ऑलिव आप लोगों के लिए लेकर आया है और हम आपको जो है कोशिश कर रहे हैं कि बुलाएं, और सबको तो नहीं बुला सकते लेकिन कुछ लकी लिसनर्स जरूर आएंगे जो कि इस ईद मजलिस पे हमारे साथ करने वाले हैं लंच। जी हाँ, इस ट्यूसडे को लंच करने वाले हैं हम, और ऑफ कोर्स आप गिफ्ट्स भी जीतने वाले हैं। बट आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना नाम जो है वो ईद मजलिस के लिए रजिस्टर करवाना होगा। तो आपको लिखना है EM, लिखने के बाद अपना नाम लिख के भेज दीजिए 3311063 पर। अगर आप सिलेक्ट हुए तो आपको इनवाइट करेंगे ईद मजलिस के लिए, जहां पर आप हमारी टीम के साथ मस्त ईद का एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर सकते हैं, आप लंच कर सकते हैं इस ट्यूसडे को, एंड ऑफ कोर्स आप गिफ्ट्स भी जीतने वाले हैं। सो फटाफट से आप लोगों के मैसेजेस भेज के रजिस्टर करवा लीजिए खुद को, EM अपना नाम 3311063 पर। सबको बता दो यार।

0: सुनते रहो रेडियो ऑलिव को और कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
3: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल। बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल।
4: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ।
5: आई वाज टोटली वर्थ इट।
4: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ।

0: हाँ हाँ प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
1: आगे जाके

0: किसी से था मुझे दूजा ही कोई मिल गया, नियत जरा बदल गई, मैं भी जरा बदल गया।
1: वाह,

0: 100% harak.
1: Radio Olive, your happiness frequency. Shackman ki power-packed range, heavy trucks, tippers, trailers aur boom trucks. Damdar performance aur bharosa, sirf Carmel ke saath. Visit Carmel Group now. Is Eid, apne fashion game ko next level par le jane ke liye, ho jaiye tayyar. Louis Philippe and Van Heusen spectacular festival offer ke saath.
2: Louis Philippe and Van Heusen ki wide range of formal, workwear, smart casual, stylish denims, sleek suits aur elegant blazers ke saath, har outfit mein milega premium fabric ka touch aur unmatched detailing ka finesse.
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप.
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्टोर्स इन ओल्ड एयरपोर्ट रोड और पाइए स्पेक्टेक्युलर फेस्टिवल ऑफर.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
4: साथ. Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: कर लो यार, दिल्ली और कोलकाता का मैच जो है। अजय देवगन पहली बार ऐश्वर्या राय को इस गाने में देखता है और एकदम पगला जाता है, मतलब वो देखता ही रह जाता है, एकदम जुगनू हो जाता है।
1: जाने क्या हुआ मुझे तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू।
0: यार ये भी है ना। ओके, दिल्ली और कोलकाता का मैच चल रहा है। दिल्ली अभी खेलना स्टार्ट कर चुका है क्योंकि कोलकाता ने टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। एंड दिल्ली अभी खेल रही है। 5.4 ओवर कंप्लीट होने के बाद दिल्ली का स्कोर है 49 और पहला विकेट जा चुका है। सो आप में से कौन कौन है जो दिल्ली से है, दिल्ली को सपोर्ट कर रहा है, जो कोलकाता से है और कोलकाता को सपोर्ट कर रहा है, बताइएगा मुझे। मैं आपको सारी स्कोर अपडेट जो है वो देती रहूंगी, बस आप लोग भी बने रहो यार मेरे साथ।
2: Update. Presented by Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul paas. Madar Kadeem, Bakra, VFS Global K side, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
3: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million rials cash prizes.
2: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 rials growth par paiye ek coupon.
3: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
2: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes Are Us. We complete.

0: प्यार में चमको जैसे जुगनू।
1: बादशाह निकिता गांधी, गुड इवनिंग है जी। आपके साथ ये गाना मौसम को डेडिकेट करती हूँ यार।
2: आशिक बनाया
1: शाम के टाइम भी इतनी ठंडी हवाएं चल रही होती है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा है कि ये जून आने वाला है। और अपने कतर में इतना प्यारा वेदर है यार शाम के टाइम पे।
0: मौसम
1: आज का वेदर जो है वो क्या कहता है, अभी 32 डिग्री सेल्सियस है एंड फील्स लाइक 32 डिग्री सेल्सियस है। हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 40 डिग्री सेल्सियस था एंड मिनिमम जो है वो 29 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। ह्यूमिडिटी आज थोड़ी सी ज्यादा है 42% एंड विंड जो है 15 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है। होपफुली आज का जो वेदर है शाम का वो वैसा ही होने वाला है। तो जितने दिन ये वेदर है ऐसा उतने दिन इस वेदर के मजे उठा लो। लेकिन अभी मैच में कौन किसके मजे ले रहा है, दिल्ली का स्कोर 9.2 ओवर कंप्लीट होने के बाद हो गया है 87 और अभी तक एक ही विकेट है वो दिल्ली का गया है। 549 स्टूडियो की घड़ी पे सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीर डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma, Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
1: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.

0: पता है कि पिज्जा से मेरा जो है वो बहुत तगड़ा प्यार है, और पिज्जा को अपना दिल जो है मैं बहुत टाइम से दे बैठी हूँ, क्योंकि जितनी बार भी देखती हूँ मैं पिज्जा को, मैं अपने होश, अपनी डाइट सब खो बैठती हूँ।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: ये बात है। कल ही मैंने परसों ही रात सोचा था कि भाई बहुत भसड़े मचा लिए मैंने वीकेंड पे, अभी सैटरडे से नए दिन की शुरुआत करते हैं, और कल फिर से मैंने पिज्जा खा लिया। चलो कोई बात नहीं है, खा लिया तो अब रिग्रेट जो हुआ, लेकिन उस टाइम पे जो खाया वो स्वाद बड़ा अलग था। अब मैं पिज्जा की बात अचानक से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब आपका कोई खाना होता है फेवरेट, तो उससे आपकी भावनाएं जुड़ी होती है, और भावनाओं के साथ जब खिलवाड़ होता देखते हैं तो आपको लगता है गलत। सो राइस पेपर आपको पता है कि आजकल हर जगह पे है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि लोग आलू का पराठा राइस पेपर के साथ बना रहे हैं, अब राइस पेपर के साथ वायरल हो रहा है पिज्जा। एग्जैक्टली, राइस पेपर के ऊपर रख के जो पिज्जा बनाया जा रहा है। मैं मानती हूं कि हेल्दी खाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब बात आए स्वाद की, तो ये चीजें कभी कभी आप खा सकते हो। कभी कभी जब खा रहे हो तो राइस पेपर वाली क्यों खा रहे हो यार, मतलब सीरियसली यार, राइस पेपर का पिज्जा बना रहे हो तुम, जिस बात मार दिए हैं आपने। खैर, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Supported by Homes R Us, we complete.

0: बहुत ही प्यारा गाना है यार चेन्नई एक्सप्रेस से, जिससे आप प्यार करते हो उसका रास्ता कैसे छोड़ सकते हो, पर बशर्ते कि वो भी आपसे उतना ही प्यार करे। ओए ओए ओए, प्यार वादा सब कुछ पक्का होना चाहिए। और आप लोगों से प्यार जो है वो भी पक्का है, और ईद आ रही है, ईद के टाइम पे ईद मजलिस में हम आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हमारे लकी लिसनर्स जो हैं, जो कि हमारे साथ इस ट्यूसडे को करने वाले हैं लंच और गिफ्ट्स भी जीतने वाले हो आप। मेक श्योर कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। रजिस्टर करवाने के लिए आपको लिखना होगा EM और अपना नाम भेजना होगा 3311063 पर। EM लिखना है, अपना नाम लिखना है, और 3311063 पे भेज देना है। मैं थोड़ी देर में वापस लौट रही हूँ क्योंकि प्रेयर का टाइम होने वाला है।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

अदनान सामी ने इस गाने को इतनी खूबसूरती से गाया ना, स्पेशली जब वो ये वाला पैरा गाता है, कह दो ना वो सनम, ओए होए, 3, 2, 1 एंड गो।

आवाज, म्यूजिक, लिरिक्स सब कुछ परफेक्ट है वाइब के साथ। 6:28, 10 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे। डेढ़ सौ 150 3 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। सो ये है स्कोर।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: The big. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Yes, Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry. Offer valid until 13th June 2026 only. Hurry!
3: Joyalukkas, world's favorite jeweler.

0: मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ਸੋਹਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਗੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। लड़की जो है वो अपने समवन स्पेशल से जिद कर रही है, कह रही है कि सानू लै दे चूड़ी, सानू लै दे चांजर, नहीं तो मैं मर जाना।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: और इस चीज से मुझे बचपन याद आता है कि मैंने सबसे ज्यादा जिद, हम सब ने अपने सबसे ज्यादा जिद जो है वो अपने माँ बाप से की है। कोई भी चीज चाहिए थी, रो देते थे, वो चीज मिल जाती थी। लेकिन बड़े हो गए हम, थोड़ा सा ऐसा हो गए हैं कि अब हम रोते नहीं है, हम खुद को संभाल लेते हैं। अगर कोई चीज चाहिए होती तो उसके लिए मेहनत करते हैं, है ना। बचपन अच्छा था यार, रोते थे तो सब मिल जाता था, लेकिन तब जिद भी सिर्फ खिलौने तक की होती थी। अब जिद जो है वो बड़ी बड़ी जिद है, जहां पर हमको हिम्मत, सब्र, सब रखना पड़ता है और मेहनत के साथ फिर वो चीज़ जब हासिल होती है तो फिर कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। और हमसे ज़्यादा, कई ज़्यादा खुशी जो है ना हमारे पेरेंट्स को मिलती है जब हमको अपनी कोई स्पेशल चीज़ जो है वो मिलती है, राइट। तर मैं एक बहुत ही प्यारा वीडियो देख रही थी जिसमें वीडियो किया हुआ था सामने, और बच्चा बोल रहा है, बेटा बोल रहा है कि मैं आपको एक गुड न्यूज़ देता हूं। तो वो बताता है कि उसकी गूगल में जॉब लग गई है, उसके पेरेंट्स इतना ज़्यादा हैप्पी होते हैं ना। तो जब हम बड़े होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स की खुशी से ऊपर कुछ नहीं होता यार हमारे लिए। सिमरन गौरयाव के साथ चियो बिंदास।

0: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेज फ्रॉम एनीवेयर विद डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: इस ईद अपने फैशन गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो जाइए तैयार लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन स्पेक्टाकुलर फेस्टिवल ऑफर के साथ
2: लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन की वाइड रेंज ऑफ फॉर्मल वर्कवेयर स्मार्ट कैजुअल स्टाइलिश डेनिम्स स्लीक सूट्स और एलिगेंट ब्लेजर्स के साथ हर आउटफिट में मिलेगा प्रीमियम फैब्रिक का टच और अनमैच्ड डिटेलिंग का फिनिश
1: अपने वार्डरोब को रीडिफाइन कीजिए और सोफिस्टिकेशन का एक नया अंदाज अपनाइए विद वैन ह्यूसन एंड लुई फिलिप
2: विजिट लुई फिलिप एंड वैन ह्यूसन And stores in Old Airport Road or Paye spectacular festival offer.
0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
3: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
5: Ibrahim bhai, Eid Mubarak.
6: Eid Mubarak.
7: Taufik chacha, Eid Mubarak.
8: Aap?
7: Chacha, main Ibrahim.
8: Har jumme raat aata hu.
7: Tumhari biryani khane ko.
8: Arey mian, Taufik chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
9: Ek kaam karte hain. Is baar biryani hum banakar khilate hain.
10: हेलो हेलो तौफिक चचा की बिरयानी में
11: शाही जीरा सबसे खास होता है मियां
10: क्यों चचा
12: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
13: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्ज़री मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट, नाउ इन बिनुमरा, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
3: Varadma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma, Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.

एक और जेंजी वर्ड को हम करने वाले हैं डिकोड, जिसका नाम है फ्रीक मैचिंग। फ्रीक मैचिंग क्या होता है कि जब आप मान लीजिए किसी से मिलने गए हैं, जिससे आप डेट कर रहे हैं, अब सडनली उस इंसान के साथ आपके इंटरेस्ट, आपकी मैच जो है वो एकदम वाइब जो है वो भी सब मैच हो जाए, उसको बोलते हैं फ्रीक मैचिंग। सो या जेंजी वर्ड है। 7:05:35 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं। मैच की क्या अपडेट है, मैं आपको वापस लौट के स्कोर अपडेट दे रही हूँ, ठीक है? सुनते रहो रेडियो ऑलिव वर्क के इधर हो बिंदास। बहुत ही खूबसूरती से आदित्य रिखारी ने इस गाने को श्रेया घोषाल के साथ गाया है, और आदित्य रिखारी की आवाज जो है ना वो आयुष्मान खुराना के साथ बिल्कुल मैच करती है यार। पहले मुझे लगा ये गाना आयुष्मान खुराना ने गाया, लेकिन बाद में पता लगा नहीं,

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
2: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million reals cash prizes.
1: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 reals growth par paiye ek coupon.
2: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
1: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
3: हाय, मैं हूँ सुहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joya Lukas. Joya Lukas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Supported by Homes R Us, we complete your home.

0: बज के 16 मिनट। दिल्ली और कोलकाता का मैच चल रहा है। दिल्ली ने पहले खेलते हुए 204 रन का टारगेट दिया है कोलकाता के लिए। कोलकाता भी जस्ट खेलना स्टार्ट किया है। 5 बॉलें जो है पहले ओवर की फेंकी जा चुकी है। स्कोर हो गया है 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बताओ इस प्यार को क्या नाम दूं?
1: व्हाट झुमका,
0: सुंदरी रेडियो ऑलिव कोर के जरिए जियो बिंदा।
2: T20 स्कोर अपडेट presented by
3: Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Global K site, Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
4: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
5: Ab suniye, Olive ka zabardast hit.

0: listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो Malabar Gold and Diamond Smart Exchange के साथ exchange your old 22 carat gold jewelry purchased from anywhere for dazzling new designs सिर्फ making charges pay करके. और अब एक और great news, with the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in Qatar. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Rafiq Chacha, Eid Mubarak.
3: Aap?
2: Chacha, main, Ibrahim.
3: Har Jumeirat aata
2: tumhari biryani khane ko.
4: Arre miyan, Taufik Chacha ko kuch bhi yaad nahi. Tab aap bhool gaye. Biryani bhi.
5: Ek kaam karte hain, is baar biryani hum bana kar khilate hain.
6: Hey, hello, hello. Taufik Chacha ki biryani mein शाही जीरा सबसे खास होता है मियां
7: क्यों चचा
8: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ
9: एक मिनट रुको एक बात शायद आप भूल गए बेटा ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांटी जाती

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेयर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम डाइसो जापान यू नेम इट वी हैव इट गोल्डन फ्लेकी इररेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा कॉन्टैक्ट 310-999-45
3: Varadma for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Varadma Wholesale Market at Selva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket.
5: Supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village. Or shop online ajwa.qa.
6: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
7: साथ Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Supported by Homes Are Us. We complete your

गाने जो है आप लोगों के लिए चल रहे हैं एंड एक नंबर बाद में आपको बताने वाली हूँ शाइन स्मार्टर दिस सीजन विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. आप अपनी ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कर सकते हैं, चाहे आपने कहीं से भी खरीदी हो, बढ़िया से डैजलिंग डिजाइन के साथ. सिर्फ मेकिंग चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ेंगे एंड उसके साथ साथ अभी क्या है कि इम्पोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, जिसकी वजह से आप यहाँ पर 15% जो है वो सेव कर सकते हैं ऑन गोल्ड, ठीक है, सो अपने कतर में. सो मेक श्योर कि आप बहुत जल्दी जितना भी आपके पास जब भी टाइम है आप अपने नजदीकी मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के शोरूम जाके इसका फायदा जरूर उठा लीजिए और नया झुमका खरीद लीजिए और फिर ये वाला गाना लगा दीजिएगा स्टोरी पे.

जीत फिल्म से उदित नारायण एंड अलका याग्निक की आवाज में आप ये गाना सुन रहे हैं, तेरी मोहब्बत है। और नहीं चाहते हैं कि अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं इस ईद के मौके पर, फैमिली से नहीं मिल रहे हैं, तो हम आपकी फैमिली हैं और हम लोग आप लोगों के साथ जैसा भी सेलिब्रेशन करें पर करें जरूर। ईद मजलिस जो है एक बार फिर से हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं हमारे कुछ लकी लिसनर्स के साथ जो है। ऑफकोर्स हम सबको नहीं लेके जा सकते बट कुछ लकी लिसनर्स जो है उनके साथ इस ट्यूजडे को हम लंच करने वाले हैं। सो अगर आप ये ईद की दावत खाना चाहते हैं सो आपको क्या करना होगा, अपना नाम रजिस्टर करवाना होगा। तो उनमें से कुछ लकी लिसनर्स के नाम सेलेक्ट करेंगे, दावत तो होगी, दावत के साथ गिफ्ट्स भी होने वाले हैं आप लोगों के लिए जो लकी लिसनर्स रहेंगे। तो आपको टाइप करना है EM टाइप करने के बाद लिखिए अपना नाम और भेज दीजिए 3311063 पर। मैं बहुत सारे मैसेजेस देख रही हूँ जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ EM लिख रहे हो, कुछ लोग सिर्फ अपना नाम लिख के भेज रहे हैं। दोस्त आपको ना एक रूल है जो फॉलो करना है तभी आपका नाम जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है सेव हो जाएगा। सो EM के बाद अपना नाम भेज दीजिए 3311063 पर।

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
1: ब्राइन भाई, ईद मुबारक.
2: ईद मुबारक.
3: तौफीक चाचा, ईद मुबारक.
4: आप
3: चाचा? मैं इब्राहिम.
5: हर जुमेरात आता
3: तुम्हारी बिरयानी खाने को.
4: अरे मियां, तौफीक चाचा को कुछ भी याद नहीं, तब आप भूल गए बिरयानी भी.
6: एक काम करते हैं, इस बार बिरयानी हम बनाकर खिलाते हैं.
7: ए, हलो हलो, तौफीक चाचा की बिरयानी में शाही जीरा सबसे खास होता है मियां.
4: क्यों चाचा?
8: चलो सब लोग खाना खाने के लिए आ जाओ.
9: एक मिनट रुको, एक बात शायद आप भूल गए बेटा, ईद की बिरयानी खुद से पहले दूसरों के साथ बांट.

0: तो इस ईद रेडियो ऑलिव कहता है, बिरयानी हो या खुशियाँ, जितनी बांटोगे वापस दुगनी मिलेगी।
1: पाई है। गिफ्टिंग पार्टनर्स ले परफ्यूम वेर लक्जरी मीट्स अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबल एट अलसद मॉल एंड मतार कदीम, डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट। गोल्डन फ्लेकी इरेसिस्टेबल स्नैक्स क्वासो फ्रॉम क्यूबेक, बेक टू परफेक्शन फिल्ड विद डिलीशियस चॉकलेट एनी टाइम स्नैक्स टाइम।
2: रेस्टोरेंट पार्टनर कोड़ीकोड स्टार रेस्टोरेंट नाउ इन बिनुमरा, कॉन्टैक्ट 310-999-45।
3: Paratma, for premium quality nuts, dates, chocolates, herbs and spices. Visit Paratma, Wholesale Market at Salva Road.
4: And Grand Mall Hypermarket, supported by Ajwa Native Supermarket. Qatar's largest collection of healthy products and 90s snacks items. Visit showroom at Barwa Village or shop online ajwa.qa.
5: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
6: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर 1 आरजे सिमरन के
8: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Supported by Homes Are Us. We come

हां जी बनाने हैं, 3 विकेट ऑलरेडी जा चुके हैं, सो 12 पॉइंट यानी कि 1 ओवर पे 121 का स्कोर जो है वो हो चुका है।

0: आज के बाद ही पता लगेगा। अभी वापस लौट के मैं नेम गेम खेलने वाली हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रेडियो पे बोला जाना चाहिए क्योंकि आप सुन रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, तो बिल्कुल बनता है आपका दोस्त। वापस लौट के नेम गेम खेलने वाली है, बस आप अपना नाम टाइप करके रखो, जैसे मैं आपको बोलूं आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है?
1: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul paas. Madar Kadeem, Bakra, VFS Global K site, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
1: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real siksa. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
3: Cool song.
1: Radio Olive par. Aane wala gaana, cool song of the hour.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Awesome.

0: क्या आप सोच रहे हैं कि what do I do with that old gold bangle in my locker? तो मलाबार गोल्ड एंड डायमंड स्मार्ट एक्सचेंज के साथ एक्सचेंज योर ओल्ड 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी परचेस फ्रॉम एनीवेयर फॉर डैजलिंग न्यू डिजाइंस सिर्फ मेकिंग चार्जेस पे करके और अब एक और ग्रेट न्यूज विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन कतर Visit Malabar Golden Diamonds today.
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardast evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Supported by Homes Are Us. We complete.

और अब हम खेलने वाले हैं नेम गेम का रूल. आपको पता है कि आपको मुझे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप करके भेजना है, और जैसे ही आप अपना नाम मुझे लिख के व्हाट्सएप करके भेजेंगे मैं आपका नाम बोल दूंगी. सो 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, 3311063. इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के मुझे भेजिए. परविंदर, जावेद, सादिया, जुल्फी, हमद खान, अमीरुद्दीन, नारायण, नसीम, सुधीर, फहाद, मुकेश, सपना, सुमोन, यास्मीन, अनिकेत, रश्मि, राबिया, राहुल, तुकाराम, प्रताप, हाफिज, मकसूद, शाबाज, राहुल, आसमा, सफदर अली, साहिल, फुरकान अली, अमर थापा, आलू, सोनू चौधरी, आशिक हसन, शैजू अली, अदील चौधरी, शाबाज, जुल्फिकार, मोहम्मद आमिर, एफजे, ईमान, एमा, सुदीप. हाय रब्बा, सांसे चढ़ गई. 3311063 पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजना है. गुज्जर, सैफ, हाफिज, इमरान, सारा, केपी, शाहिद, थैंक यू, येम थापा, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया अब आप थैंक यू लिख सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के मुझे भेज सकते हैं. लीजिए नमस्ते लंदन का ये गाना आपके लिए. थियो बिंदास.

ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ सिमरन कौरियाव के साथ और जबरदस्त इवनिंग्स के चार घंटे अब ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं और सिमरन कौर के यहाँ से गलती मारने का टाइम आ चुका है. आज जब आप रात में सोएंगे ना तो आपके चेहरे पे एक हैप्पीनेस रहेगी कि ईद की छुट्टियां आने वाली हैं, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगी वो करूंगी. कोई बात नहीं है, अच्छे से प्लानिंग जो है वो करिए और बस ईद की छुट्टियां कुछ ही दिन, एक आध दिन जो है वो दूर है क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां अभी ट्यूजडे को स्टार्ट होने वाली है ना बहुत सारे लोगों की. सो कल का दिन ही आपने ऑफिस जाना है, चिल करो यार, खुश रहो. ओके सो कल शाम को 5 बजे फिर से होती है आपसे मुलाकात जबरदस्त इवनिंग्स में. अगले 2 घंटे मिडनाइट लाउंज को दे दीजिए. सो खाने पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बर्थडे वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सर्किलो.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
1: शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज हैवी ट्रक्स टिपर्स ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कारमिल के साथ विजिट कारमिल ग्रुप नाउ।

अच्छा अभी एक रील देख रहा था जिसके अंदर आ रहा था कि 90s के बच्चों को और जेंजी के बच्चों को अगर लाइट्स का ऑप्शन दिया जाए तो जेंजीज आर मोर इनटू डिम लाइट्स, उनको ऑफिस में बिठाया जाए तो वो डिम लाइट्स में बैठे रहते हैं, उससे आंखों पे जोर पड़ता है। फिर सच बताऊं मैं 90s का बॉर्न हूं लेकिन स्टिल मुझे भी डिम लाइट पसंद है। हे दिस इज मी आरजे आकाश आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल अप पर मिड नाइट लाउंज के सफर में। फिलहाल सच बताऊं रात का असली मजा उस डिम लाइट में है, क्योंकि चांद की रोशनी जब पड़ जाए, मैं तो कह रहा हूं डिम लाइट भी बंद कर दो, जब वो खिड़की से चांद की रोशनी दिखे और बैकग्राउंड में मेरे चलाए हुए वो गाने, उफ क्या बताऊं, फिर तो समा बन जाता है। तो चलिए समा बनाते हैं और चार चांद लगाते हैं इस प्यारे सी शाम में। प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल से ट्रैक्स फिलहाल कहां से सुन रहे हैं और कैसे हैं आप जरूर मुझे बताइएगा। इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा, फॉलो कीजिए ताकि रिश्तेदारी और गहरी हो जाए। यकीन मानिए बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक्स लेकर आया हूं मैं आज आपके लिए अपनी लाइब्रेरी से निकाल के, तो कहीं जाइएगा नहीं। शुरुआत करते हैं इनबॉक्स में मैसेज के सिलसिलों से। हाय आरजे आकाश टिककर, बताइए कहां से सुन रहे हैं और कौन सा गाना आज आपको पसंद आने वाला है, ये शो के एंड तक में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस गाने के साथ जियो बिंदास।

0: अच्छा रील तो छोटी सी होती है लेकिन कमेंट सेक्शन में पूरी दुनिया दिख जाती है, नहीं पूरी दुनिया बस जाती है आगे। Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो Olive पर Midnight Lounge में। और Instagram के चर्चे सिर्फ Instagram के कमेंट सेक्शन तक ही क्यों, Midnight Lounge की गपशप में भी तो शामिल होने चाहिए।
1: रील वाली रियल कहानी।
0: आजकल रील्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गई हैं, रिसर्च मटेरियल भी बन चुकी है। नहीं कभी कोई इमोशनल रील खोलो, नीचे लिखा मिलेगा मुझे मेरी याद आ गई यार इस वाले किस्से की। कोई फूड रील खोलो, कमेंट आएगा रात के 2 बजे भूख लगा दी यार। मतलब मुझे लगता है कि कोई मोटिवेशन रील भी देख लो ना तो एक कमेंट तो पक्का होगा नीचे, कल से पक्का शुरू होने वाला है ब्रो, कल से मैं भी जाने वाला हूँ जिम। लेकिन एक चीज नोटिस की है कभी आपने, कमेंट सेक्शन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, लोगों की रियल स्टोरीज। कोई अपनी याद लिख देता है, कोई अपना दर्द, कोई अपनी हंसी, और कभी कभी एक अननोन इंसान का कमेंट सीधा दिल को टच कर जाता है, रिलेटेबल जो होता है जनाब। तो क्वेश्चन ये है जनाब आपसे मेरा कि आप रील देखते वक्त वीडियो ज्यादा देखते हैं या फिर कमेंट ज्यादा पढ़ते हैं? मैसेज कीजिए और बताइए किस कैटेगरी में आप सबसे ज्यादा आते हैं। इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, लेकिन उसके लिए पहले आपको इंस्टाग्राम जो आप स्क्रॉल करते रहते हैं वहां जाना होगा, हाय आरजे आकाश लिखकर बताना है कि आप रील्स ज्यादा देखते हैं या फिर कॉमेंट सेक्शन में चटकारे लेकर मजे लेते हैं। तो आप मैसेज कीजिए और अभी फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए। विल बी राइट बैक ओनली ऑन रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। ये है मिडनाइट लव।

अच्छा बहुत बार होता है ना कि मूवी बिल्कुल बढ़िया नहीं होती लेकिन उसके गाने कई बार जुबान पे ऐसे छा जाते हैं, उसकी धुनी बहुत प्यारी लगनी स्टार्ट हो जाती है, थीम म्यूजिक बड़ा प्यारा लगता है नहीं। हाई दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर, और बारी है

0: फ्लैशबैक।
1: चलिए करते हैं एक फिल्मी फ्लैशबैक में जाकर फिल्मी तहकीकात। जी, कभी कभी मूवीज ऐसी होती है ना जिनकी स्टोरी लाइन उतनी स्ट्रॉन्ग या इंटरेस्टिंग नहीं लगती, लेकिन उसके गाने पूरी मूवी का मैजिक ही म्यूजिक संभाल लेता है। नहीं भाई, आज एक और फन क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। कौन सी मूवी आपको ऐसी लगती है कि जिसकी स्टोरी ने उतना इंप्रेस नहीं किया जनाब, लेकिन गानों ने दिल जीत लिया? मैसेज कीजिए, देखते हैं कि किस मूवी का नाम सबसे ज्यादा आता है। मैं हूं आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा, रेडियो ऑलिव का पेज है, इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश, और आपका जवाब सबसे पहले जो जवाब देगा बस उसके नाम के साथ एक प्यारा सा गाना मैं डेडिकेट करूंगा, वही फेवरेट वाला जी। अच्छा, वैसे कुछ फिल्में कहानी से याद रहती हैं और कुछ सिर्फ उनके गानों से जो कभी पुराने नहीं होते, तो इसलिए अभी जो गाना मैं चलाने जा रहा हूं वो उस फिल्म की भी याद दिला देगा और शायद आपकी किसी याद की भी। तो कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

भाई देखो, कभी कभी ना मूवी खत्म हो जाती है लेकिन उसके गाने हेडफोन्स में रिटायरमेंट लेने से मना कर देते हैं। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर। हम जा चुके थे कहाँ,

जी हाँ, हम आ चुके हैं फिल्मी फ्लैशबैक में। तो हमने पूछा था ऐसी कौन सी मूवी है जिसकी स्टोरी लाइन ने उतना इम्प्रेस नहीं किया लेकिन गानों ने दिल जीत लिया, और बहुत सारे मैसेजेस आए लेकिन एक नाम काफी लोगों ने बोला, आशिकी 2। कैसे बोल सकते हैं यार तुम आशिकी 2। वैसे मूवी देखते देखते कुछ लोग स्टोरी से ज्यादा बिजी थे, सुन रहा है ना तू, या फिर किसी को प्रपोज करते साइन तुम ही हो, या फिर कोई दिल से चाहूं मैं या ना प्लेलिस्ट सेट करने में बिजी हो गया था। नहीं अच्छा, उस टाइम ना एक अलग ही टैलेंट था, दुखी ना भी हो तो भी ईयरफोन्स लगा के सैड सॉन्ग सुनो तो ऐसा लगता था पता नहीं किसने दिल तोड़ दिया है, और खिड़की के बाहर देखते देखते बस उन गानों को फील कर लो। जैसे लाइफ में 4 ब्रेकअप्स और 2 धोखे तो हो ही चुके हैं, नहीं वैसे आप भी बताइए, वैसे मुझे बताइए कि आपने कभी, अब तो चलो ठीक है नया जमाना है सीधा गाने डाउनलोड करो गाने लगाओ, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ कुछ गानों के पीछे उस मूवी को देखो या पर्टिकुलर किसी सीन के पीछे आपने पूरी मूवी देखी हो? भाई स्टोरी भूल जाते हैं लोग लेकिन कुछ गाने दिल की प्लेलिस्ट से कभी डिलीट नहीं हो पाते। अभी फिलहाल जो मैं गाना चलाने जा रहा हूँ वो मेरी लाइब्रेरी में कभी डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि वो गाना हाय मेरी तो जान है, आपका भी होगा जनाब। सुनिए साथ में एंजॉय करते हैं और दिल से कहते हैं जियो फिंदास।

0: अच्छा किसी गलत जगह कैद रहने से अच्छा है उम्र भर भटकते रहना। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा है डिजिटल डायरी के पन्नों पर।
1: डिजिटल डायरी।
0: हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। लिखा है आज के डिजिटल डायरी के पन्ने में बहुत सही, बहुत खूबसूरत अल्फाजों में, गलत जगह कैद रहने से लाख लाख लाख गुना अच्छा है उम्र भर भटकते रहना। हम सबको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि किसी इंसान के साथ हम घर बसाएं, किसी इंसान के साथ हम लाइफ में आगे बढ़ें, है ना। हर किसी का एक सपना होता है कि एक राजकुमार आएगा, वो घोड़े पे उठा के बिठा के हमको लेकर जाएगा, उसके बाद वो हमें पलकों पे बिल्कुल यू नो क्वीन की तरह रखेगा। ये लड़कियों की एक थॉट प्रोसेस होती है। लड़कों का क्या प्रोसेस होता है? थॉट प्रोसेस, एक लड़की आएगी जो मेरे घर को पूरा संवार देगी, मम्मा पापा को मेरे से भी ज़्यादा प्यार देगी, पूरे घर को जोड़ कर रखेगी। लेकिन दोनों की एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं बिखर जाती है। मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान परफेक्ट होता है, लेकिन एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं दोनों को करना पड़ता है। लेकिन फिर आता है जहां एक दूसरे को शायद कोई पसंद ही नहीं करता, जहां शायद एक तो पूरे एफर्ट्स दे रहा है पर शायद दूसरा उसके एफर्ट्स की कोई कदर नहीं कर रहा। और इसमें कोई भी मैं लड़का या लड़की का फर्क नहीं कर रहा, इसमें कोई भी वही शख्स हो सकता है जिसे शायद ये शादी या ये साथ जबरदस्ती दिया गया है, या वो शायद बेमन से आपके साथ है। तो याद रखो, जहां मन नहीं वहां डगर नहीं। इसलिए मेरा मानना है कि किसी गलत जगह कैद रहने से लाख अच्छा है। अभी फिलहाल इस प्यारे से गाने के साथ इस इवनिंग को ब्यूटीफुल सा बनाते हैं। अगर दो प्यार करने वाले साथ बैठे तो उनको ये फील कराते हैं कि वो शायद एक सही जगह पर हैं, और इन दोनों को तो कैद होने की पूरी इजाजत है। तो कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर। दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

0: ये है Midnight Lounge.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

देखो क्या है ना, जिंदगी वही रहती है, बस स्टेटस चेंज होता है, है ना? डायलॉग चेंज हो जाते हैं। कब? शादी के बाद। हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज के सफर में, और बारी है एक रात एक कहानी की। बिफोर मैरिज क्या होता है? रात के 1 बजे तक फोन, लॉन्ग टॉक्स, नहीं तुम फोन रखो, नहीं पहले तुम, और मैरिज के बाद लाइट बंद कर दो यार, सुबह जल्दी उठना है। बिफोर मैरिज तुमने खाना खा लिया, मैरिज के बाद आते हुए धनिया ले आना, ठीक है? बिफोर मैरिज सरप्राइज गिफ्ट्स, लॉन्ग ड्राइव्स, लेट नाइट चैट्स, मैरिड लाइफ, रिमोट किधर है यार? एसी 24 पे रखो यार, ये चार्जर किसने उठा लिया यार? लेकिन एक बात पता है, प्यार पहले एक्साइटमेंट वाला होता है और उसके बाद में कंफर्ट वाला। क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज लाइफ का सबसे रिलेटेबल डिफरेंस क्या रहा है आपकी लाइफ में? जो भी अब तक मैंने बोला, इनमें से आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ इससे कितनी रिलेटेबल है? आपके हस्बैंड कितने रोमांटिक थे? और एक और सबसे रिलेटेबल पॉइंट जो मुझे फील होता है बेचारी महिला समाज की ओर से, कि जब वो रात के 11 बजे, जो कि नहीं करना चाहिए उन्हें, रात के 11 बजे जो वो अपने पति से डिस्कशन करके बहस की उम्मीद रखती है और उसके बाद 10 मिनट बाद वो उम्मीद करती है कि भैया वो उनको सॉरी बोलेंगे पलट के, पर तब तक उनकी घराटे चालू हो चुकी होती है ना पति देवों की। अब बताइए उस बेचारे का कहाँ कसूर है? दिन भर का थका हारा आदमी। लेकिन मेंस आर वेरी सिंपल, वो इतना स्ट्रेस लेते ही नहीं। नींद प्यारी यार, खाना प्यारा, नींद प्यारी है कि नहीं? लेकिन अगर आपके भी हस्बैंड की यही दिक्कत है तो चलिए आज उनको एक प्यारे से गाने के साथ नींद नहीं बल्कि प्यारे लम्हे गिफ्ट करते हैं, साथ में गुनगुनाते हैं यार। लड़ाई झगड़ा छोड़ो यार, प्यार व्यार के फूल तोड़ो, अभी कहीं जाएगा नहीं। संत रही रेडियो वाले मुर्दिल से कहते रहिए जियो बिंदास।

0: देखो अगर मैंने लाइफ से कुछ सीखा है ना तो ये सीखा है कि ब्रांड से नहीं कॉन्फिडेंस स्टाइल बनता है और पर्सनालिटी को ग्लो किसी शोरूम में नहीं मिलता है बल्कि जिम में मिलता है। हे हाय, दिस इज मी आरजे आकाश, आपकी दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑल एफ पर। और आज की कहानी है फैशन का सीक्रेट।
1: यू शुड नो Before you sleep.
0: कभी कभी लगता है कि फैशन का असली सीक्रेट एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी होती है। ब्रो पैसे होने चाहिए, समझे ना, ऐसे बोलते हैं ना। क्योंकि नोटिस किया होगा कुछ लोग सिंपल टी शर्ट और नॉर्मल आउटफिट्स में भी हीरो लगते हैं और कुछ लोग फुल ब्रांडेड लुक में भी बोलते रह जाते हैं, भैया यार कुछ मिसिंग सा लग रहा है, पता कितने महंगे ड्रेस है, हाँ तुमने तो ऐसे ही बोल दिया। और एक बात और, जब इंसान अपना ख्याल रखता है, हेल्दी फील करता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली अलग लेवल पे चला जाता है। मानते हो कि नहीं, अगर ही करते हो। देखो स्टाइल ना सिर्फ कपड़ों का नहीं होता, चलने का, बोलने का और खुद को कैरी करने का भी होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी फिटनेस। तो कल से जो तुम नए साल पे हर साल बोलते हो ना, लेकिन कल से जिम जाओ, क्योंकि घर में तुम एक्सरसाइज करने नहीं सकते, वो मैट बिछाते तो तुम उस पर सो जाते हो सुबह सुबह। बट मेरी बात मानो, खुद पर इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट करो। तो आज सोने से पहले एक बात याद रखना, फैशन ट्रेंड से पहले अपना कंफर्ट और कॉन्फिडेंस चूज करना। अभी यारों कहीं जाएगा नहीं, सुनते रहिए, दिल से कहते रहिए रेडियो ऑल एफ, जियो बिंदास।

देखो हर रात ना कुछ तो दे ही जाती है, कुछ यादें और कुछ मुस्कुराहट की वजह। हाय दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज 106.3 रेडियो ऑलिव पर मिडनाइट लाउंज के सफर में। आज फिलहाल इतना ही, अब वक्त है आंखों को थोड़ा रेस्ट देने का और सपनों को ऑनलाइन आने देने का। नहीं, जो जाग रहे हैं उनकी रात सुकून वाली हो और जो सोने जा रहे हैं उनके लिए कल की सुबह स्माइल वाली हो। मैं हूं आरजे आकाश, मिडनाइट लाउंज के सफर में बार बार आता रहूंगा, इसी तरह से ब्यूटीफुल से ट्रैक्स आपकी पसंद के लाता रहूंगा। कैसे सुनने, कौन से सुनवाने हैं, इसके लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट बताता रहूंगा। बस बहुत हो गया शायरी। रेडियो ऑलिव का पेज मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, हाय आरजे आकाश लिखकर अपना फेवरेट गाना जरूर बताइएगा, सजेस्ट कीजिएगा। देखते हैं जल्द से जल्द आपका गाना भी जरूर चलाएंगे। और बाकी फिलहाल अभी जाता जाता अपनी प्लेलिस्ट के सबसे ब्यूटीफुल ट्रैक्स लगा के जा रहा हूँ, तो नींद तो जनाब हम भी आपको आने देंगे। वैसे प्यार करने वालों की यही तो निशानी है कि वो सोने कहाँ देते हैं, तो आपसे बातों में आपको बिजी रखते हैं। हम इसी तरह से ऐसे ऐसे गाने लगाएंगे कि आपके, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आप एक दो चक्कर और काट के आओगे, और अगर आप इवन घर में हो तो अपनी आंखें झपका के बस सो ही नहीं पाओगे, बाकी गुनगुना जरूर पाओगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल से कहते रहिए जियो बिंदास, बाय बाय, गुड नाइट।

भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. 106.3.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm a number one. Radio Olive.
1: I'm a number one. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त है।

Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Gio Bindas.

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।